0: सहयोग, रक्षा और सुरक्षा साझेदारी तथा क्षमता निर्माण सहित प्रमुख क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इथियोपिया की भागीदारी की सराहना की और कहा कि इसकी उपस्थिति से ग्लोबल साउथ की सामूहिक आवाज को और मजबूती मिली है। प्रधानमंत्री ने भारत की अध्यक्षता में आयोजित हो रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी आज देर शाम चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। बेलारूस के विदेश मंत्री मार्क्सिम रिजनकोफ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। भारत और बेलारूस के संबंध प्रगाढ़ और मैत्रीपूर्ण हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर सहयोग लगातार बढ़ रहा है। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुंग भी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे हैं। भारत और वियतनाम के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी है। दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा, फिनटेक, महत्वपूर्ण खनिजों तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों देश बहुपक्षीय सहयोग के क्षेत्र में भी मिलकर काम कर रहे हैं। इससे पहले आज सुबह विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रियसस भी इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री मार्ग, निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला और समुद्री नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल ब्रिक्स व्यापार मंच में ब्रिक्स देशों से व्यापारिक बाधाएं दूर करने और कारोबार के लिए नए अवसरों का विस्तार करने की दिशा में काम करने का भी आग्रह किया।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेन सिक्योर हो, सप्लाई रूट ओपन हो और सी फेरर सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व में बढ़ती व्यापारिक बाधाओं के बीच भारत आर्थिक सेतु बनाने की दिशा में काम कर रहा है। इस बीच सम्मेलन को देखते हुए आज रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन और नियंत्रित आवागमन लागू किया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन, विशेषकर मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। सऊदी अरब ने ड्रोन हमले के एक दिन बाद देश भर में फैली एक बड़ी तेल पाइपलाइन को बंद कर दिया है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि हमले के बाद ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को बंद कर दिया गया है। ये तेल पाइपलाइन को ऐसे समय में बंद किया गया है जब यमन के हौसी विद्रोहियों ने मोखा बंदरगाह और पेरिम द्वीप पर कब्जा कर लिया है, जिससे पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल गया है। बाब अलमंदेब जलडमरू मध्य दुनिया के प्रमुख नौवहन मार्गों में से एक है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रूपये की पेंशन सुनिश्चित की गई है। भारत ने महिला जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। दूसरे सेमीफाइनल में चीन का सामना जापान से होगा। और इस बीच खबर मिली है कि चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग 2026 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री आज शाम उनके साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में अमरीका के बेन शेल्टन का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi today held bilateral talks with his Ethiopian counterpart Dr. Abiy Ahmed Ali on the sidelines of the 18th BRICS summit in New York.

0: लगा फासला देखकर, पर में बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नजदीक आ गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर।
1: और घर आंगन के इस शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट सिमरन कौर।
0: और मैं हूँ दीपा भूषण।
1: तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। और
0: श्रोताओं, आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर, यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं आकाशवाणी के YouTube और इंद्रप्रस्थ चैनल पर भी, यानी 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर।
1: और श्रोताओं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रथम प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और गुरबाणी का प्रकाश हर मन को शांति, प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता रहे, यही हम सब चाहते हैं। और साथ ही दीपा, देखो आज है छुट्टी का दिन, और छुट्टी के दिन खास तौर पर थोड़ा सा आलस तो हो ही जाता है
0: उससे मैं सुबह लेकिन आलस होना चाहिए पर एक्टिव भी होना।
1: हाँ, लेकिन आलस के साथ साथ हम ये चाहते हैं, चाहे दिन कोई भी हो आपका, छुट्टी का दिन हो या ना छुट्टी का दिन हो, पर अपनी जो रूटीन है ना वो कायम रहनी चाहिए, वो बदलनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर जैसे बदली तो आपका फिर स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। तो इसीलिए अपनी रूटीन को कभी ना बदलने दीजिए। और आज श्रोताओं के लिए जो हम जो सवाल लेकर आए हैं,
0: क्या सवाल,
1: वो सवाल है कि आपके दिनचर्या में सबसे ज्यादा एक्टिव समय कौन सा होता है, सुबह, दोपहर या शाम? आप हमें लिख के बिल्कुल जल्दी जल्दी से अपने जवाब भेज दीजिए, और हमें इंतजार है आपके जवाबों का। तो ये था आज का सवाल। तो दीपा, कैसा लगा ये सवाल तुम्हें आज का?
0: मुझे तो बहुत अच्छा लगा सिमरन। और तुम अपनी वो मेल भी तो बताओ।
1: हाँ, मेल तुम बताओ कि किस मेल पे हमें हमारे श्रोता जो हमें जवाब देंगे,
0: जवाब दे सकते हैं, और आपके जवाब हम आज ही शामिल करेंगे fmgoldga@gmail.com पर।
1: और साथ ही अब जब तक हमारे श्रोता हमें जवाब लिखकर भेजें, सोचें, तब तक हम अपने श्रोताओं को खूबसूरत सा क्यों नहीं गीत सुनवाएं।

0: अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में गीत, फिल्म थी जमी आसमां।
1: दोस्तों अब आज हम बात करेंगे विशेष दिन की। आज दोस्तों प्राथमिक चिकित्सा दिवस है। आज यानी 12 सितंबर को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाते हैं और दोस्तों ये दिन वर्ष के सितंबर माह के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2000 में अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रीसेंट सोसाइटी महासंघ IFRC ने की थी।
0: बिल्कुल, और इसका उद्देश्य आम लोगों में प्राथमिक चिकित्सा के महत्व को और आपात स्थिति में जीवन बचाने वाली तुरंत सहायता के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है और साथ ही दुर्घटना और अत्यधिक रक्तस्राव या अचानक स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति में प्राथमिक उपचार की जानकारी कई बार जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
1: बिल्कुल सही कहा सिमरन। और आज एक खास दिन और है, आज यानी 12 सितंबर को हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध महान रचनाकार पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की पुण्यतिथि है। अपनी कालजयी कहानी उसने कहा था से हिंदी कथा साहित्य को एक नई दिशा देने वाले गुलेरी जी स्वयं महान इतिहासकार और भाषाविद भी थे।
0: बिल्कुल, और दीपा देखो उनकी अपार विद्वत्ता के कारण उन्हें इतिहास दिवाकर की उपाधि से भी विभूषित किया गया था और खासतौर पर उनका अमर जो साहित्य जो भी था आज भी हमारा मार्गदर्शन करता है। मतलब जो उनका अमर साहित्य था वो हमारा आज भी मार्गदर्शन
1: कर रहा है। बिल्कुल सही कहा सिमरन तुमने। और पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी को उनकी पुण्यतिथि पर सादर नमन।
0: और साथ में दीपा मैं एक बार फिर से ये दोहराना चाहूंगी कि हमारा आज का जो सवाल है वो है आपके दिनचर्या में सबसे ज्यादा एक्टिव समय कौन सा होता है, यानी कौन सा ऐसा समय होता है सुबह दोपहर शाम या जब आपका मतलब आप बहुत ही उत्सव आप एनर्जी आपके अंदर हो और आप काम करने में बेहद खुशी महसूस करें कोई भी काम करने में। कई बार होता है हम आलस में कोई काम कर नहीं पाते, तो हमें जो भी है आपके मैसेज वो भी हमें फटाफट से भेज दीजिए तो हम उनका इंतजार कर रहे हैं। और मैसेज करने के लिए एक बार पता बता दो।
1: हाँ, हमारा पता है ईमेल के लिए fmgoalga@gmail.com।

0: दोस्तों, अभी आपने लता मंगेशकर जी का गाया हुआ शक्ति फिल्म से ये गीत सुना। और सिमरन, हमारे जो तुमने प्रश्न पूछा था उसकी कुछ मेल आने लगी हैं।
1: बताओ तो, कौन सी मेल आई है?
0: बहादुरगढ़ से मेल आई है महेश अग्रवाल जी और मीना अग्रवाल जी। वो लिखते हैं कि दीपा जी, सिमरन जी नमस्कार, और बहुत ही खूबसूरत गाने और बहुत खूबसूरत सवाल आपने पूछा है। और वो लिखते हैं कि कार्यस्थल पर तो हमारा शाम के समय बहुत ही हम एक्टिव होते हैं, और घर पर सुबह के वक्त हम बहुत ज्यादा बिजी रहता है, ऐसा वो लिख रहे हैं।
1: और साथ में एक रजत की मेल आई है, ये है नोएडा से। इन्होंने लिखा है, नमस्कार बुआ, दोपहर के भोजन के बाद का समय मेरे लिए सबसे अधिक सक्रिय रहने का समय होता है, और ये आसान नहीं है, लेकिन शरीर और मन को आलस्य से दूर रखना जरूरी है। तो थोड़ी सी निमित्तता और इच्छा शक्ति से हम खुद को सक्रिय और ऊर्जावान रख सकते हैं। भाई देखो, बहुत ही अच्छा रजत जी ने लिखा है, और कितनी अच्छी बात कही है। हमारे मेल का जवाब बहुत ही खूबसूरत ढंग से इन्होंने लिखकर हमें भेजा है। तो देखो, अगर हम बात कर ही रहे हैं कि एक्टिव कैसे रहते हैं, जीवन शैली हमारी कैसी रहती है, तो क्यों ना हम एक बात करें कि जरा एक पल रुक कर खुद से पूछिए कि कितनी एक्टिव है आपकी जीवन शैली। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक हमारी दिनचर्या में कितना समय ऐसा होता है जब हमारा शरीर सक्रिय रहता है, ये बताओ।
0: और आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी में दोस्तों, हम काम तो बहुत करते हैं लेकिन शारीरिक गतिविधि अक्सर कम होती जा रही है। घंटों कुर्सी पर बैठकर काम करना, लिफ्ट का इस्तेमाल करना, पास की दूरी के लिए भी वाहन लेना, और खाली समय में लगातार मोबाइल या टीवी देखना, ये सब हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन गया है।
1: लेकिन एक्टिव रहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आपको घंटों जिम में जाकर पसीना बहाना है। छोटी छोटी आदतें भी आपकी जीवन शैली को ज्यादा सक्रिय बना सकती हैं।
0: बिल्कुल। और मसलन अगर मंजिल पास है तो पैदल चलिए, मतलब अगर आप पास में ही आपकी जो लिफ्ट है से जाना जरूरी नहीं है, मतलब अगर आप सेकंड फ्लोर पे रहते हैं तो आप चढ़ के भी जा सकते हैं। सीढ़ियों का इस्तेमाल करिए, लंबे समय तक बैठने के बीच थोड़ा उठकर चलिए जरूर।
1: बिल्कुल सही। और सुबह या शाम कुछ समय टहलना, पसंदीदा संगीत पर हल्का डांस करना, या घर के कामों में सक्रियता में हिस्सा लेना भी शरीर को गतिशील रख सकता है।
0: और दोस्तों याद रखिए, एक्टिव लाइफ स्टाइल सिर्फ शरीर के लिए नहीं बल्कि मन को भी तरोताजा रखने का एक खूबसूरत तरीका है।
1: तो आज से खुद को एक छोटा सा चैलेंज दीजिए, हर दिन अपनी दिनचर्या में थोड़ी और गतिविधि जोड़ने का, क्योंकि स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी की शुरुआत अक्सर एक छोटे से कदम से होती है, जैसे

0: जान पहचान पहले से थी। ये गीत अभी आपने सुना, गायक कलाकार थे आशा भोसले और किशोर कुमार, फिल्म थी भला मानुष।
1: और दीपा एक मेल आ गया है मेरे पास, उन्होंने ये है चरण दास का मेल है, इन्होंने लिखा है कि एफएम गोल्ड 2 साल से सुन रहा हूँ, रोजाना जवाब भेजता हूँ, शामिल होते नहीं, आज भेजूंगा, प्रस्तुतकर्ता का नाम सुनते ही समझ गया कि आज तो मेरा शामिल हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है चरणदास जी, हमने आपका मेल शामिल किया है और हम पढ़ भी रहे हैं कि आपका मेल शामिल नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं, हमने आपका मेल भी शामिल किया और हम आपका नाम भी पढ़ रहे हैं। साथ में एक और मेल मेरे पास आया है, ये है अफरोज शेख का, इन्होंने लिखा है कि मैं तो पूरे दिन अपने काम में एक्टिव रहता हूँ जी। बहुत अच्छी बात है, हाँ कि पूरे दिन अच्छा है, और कई बार क्या होता है कि हम किसी समय सुबह हो जाते हैं एक्टिव, कई बार हमें एनर्जी ज्यादा होती है जब हम उठते हैं सुबह, लोग कहते हैं एनर्जी काफी होती है, और उसके बाद फिर धीरे धीरे दोपहर आ जाती है तो थोड़ा सा एनर्जी लो हो जाती है और शाम को थोड़ी सी और कम। तो इस बार ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने लिखा पूरे दिन रहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, अब अगला क्या बताने वाली हो तुम?
0: हाँ, अब हम बात करने वाले हैं सिंगर आज एक राष्ट्र एक समय की। देखो, देश में घड़ियां तो पहले भी एक ही समय बताती थी और अब जो हमारी सरकार है उसकी कोशिश है कि देश की महत्वपूर्ण डिजिटल प्रणालियों की घड़ी भी एक ही भरोसेमंद समय से चले।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने, और खास तौर पर जब घड़ी की बात तुम एक कर ही रही हो तो इसका ये मतलब नहीं कि समय बदलता है, बदलता नहीं है, ऐसा नहीं है, बल्कि समय जो नापने और रिकॉर्ड करने के लिए एक आधार जो है वो करता है ना।
0: हाँ, मतलब ये है कि समय बदलना है, बल्कि समय को नापने और रिकॉर्ड करने का आधार एक करना है, कि मतलब हम समय को नहीं बदल रहे हैं, और इस उद्देश्य से सरकार ने एक राष्ट्र एक समय के तहत 27 अगस्त 2026 को नए नियम जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य पूरे देश में भारतीय मानक समय IST को एक समान और आधिकारिक समय के रूप में इस्तेमाल करना है। एक राष्ट्र एक समय इस पहल से देश की महत्वपूर्ण प्रणालियों को भारतीय मानक समय यानी IST को एक समान और विश्वसनीय स्रोत से जोड़ा जाएगा।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने, और सरल शब्दों में कहें तो देश में समय जो है बताने और दर्ज करने का एक ही भरोसेमंद आधार होगा। आज हमारी जिंदगी का लगभग हर काम सही समय पर निर्भर करता है, जैसे कि बैंक में पैसे भेजना, प्राप्त करना, ऑनलाइन भुगतान, मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं, रेलवे और हवाई सेवाएं, बिजली व्यवस्था, सरकारी रिकॉर्ड, कानूनी दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड, है ना, इन सभी में जरूरी है कि

0: समय और टाइम स्टैम्प बिल्कुल सही हो।
1: बिल्कुल सही होना चाहिए, ये सही बात है। और अगर अलग अलग प्रणालियों में समय में थोड़ा भी अंतर हो तो लेन देन रिकॉर्ड और सेवाओं में परेशानी हो सकती है।
0: और ये जो नियम है वो तुरंत नहीं लागू होंगे, है ना, क्योंकि इनके लागू होते ही पहले 180 दिनों का समय दिया गया है और इस दौरान सरकारी विभाग, बैंक, कंपनियां, संस्थान और दूसरी संबंधित एजेंसियां अपनी नजदीकी प्रणालियों के जांच करके जरूरी बदलाव कर सकेंगी। बिल्कुल
1: एक, हाँ बिल्कुल सही बताया सिमरन तुमने। और दोस्तों, एक राष्ट्र एक समय का मतलब है देश के महत्वपूर्ण कामों और डिजिटल प्रणालियों के लिए समय का एक ही भरोसेमंद भारतीय मानक ISTS। इससे समन्वय बेहतर होगा, डिजिटल रिकॉर्ड अधिक सटीक होंगे और महत्वपूर्ण प्रणालियों से समय की गड़बड़ी भी कम होगी।

0: समय तू धीरे धीरे चल, ये गीत अभी आपने सुना। गायक थे किशोर कुमार, आशा भोसले और फिल्म थी कर्म। और सिमरन कुछ और मेल आई हैं, तो जो नवीन भाटिया जी हैं, इन्होंने भी अपनी मेल पहले भेजी थी। जो है ये कहते हैं कि सुबह उठने के बाद, स्नान ध्यान के बाद ये काफी एक्टिव हो जाते हैं, ये बात उन्होंने लिखी
1: बहुत
0: है,
1: अच्छी बहुत अच्छी बात है। और साथ में मेरे पास भी दीपा एक मेल और आ गया है, ये गौरी शंकर जी का मेल है और इन्होंने राम राम तो कही हम दोनों को, और साथ में इन्होंने कहा है कि सुबह की शुरुआत बहुत अच्छी है। राम, वैसे काम के लिए सुबह की शुरुआत बहुत अच्छी होती है, सारा दिन ध्यान काम में रहता है इंसान के, सुबह कुछ और विचार होते हैं, शाम को बदलाव आ जाता है। तो ये आपने बहुत ही अच्छा कहा, अगर शरीर का इस्तेमाल भाग दौड़ में नहीं करेंगे तो शरीर बीमारी का घर बन जाएगा। शुक्रिया गौरीशंकर नांगलोई से, बहुत बहुत शुक्रिया गौरीशंकर जी, आपका मेल बहुत अच्छा था, हमें अच्छा लगा।
0: सभी जो श्रोता मेल लिख रहे हैं उनको हम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और आज सिमरन अब हम बात करने वाले हैं सड़क नियमों के आगे शिष्टाचार, मतलब सड़क पे हमारे क्या हमें करना चाहिए, क्योंकि देखो आज की जो हमारी बातचीत है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत जुड़ी हुई है। हम में से बहुत सी महिलाएं हैं या और भी लोग हैं खुद कार या टू व्हीलर्स चलाते हैं, और अगर वाहन नहीं चलाते तो पैदल सड़क का इस्तेमाल तो करते ही हैं, कार्यालय जाने के लिए, बाजार जाने के लिए, बच्चों को स्कूल छोड़ने या लेने के लिए।
1: बिल्कुल, और खास तौर पर दिल्ली एनसीआर में रहने वालों के लिए यातायात जो है हमारी रोज की कहानी है, लेकिन यातायात में फंसते ही एक दिलचस्प बात होती है, हम अक्सर दूसरे को बहुत ही गलत नजर से देखते हैं और बहुत जल्दी ऐसे बोलते हैं कि जैसे मतलब उन्होंने कि अचानक ब्रेक क्यों लगा दी और इन्होंने दिशा रंग नहीं दिया, है ना, अपने आप ही बदल दी गाड़ी, और साथ में मेरी लेन से मेरी लेन में क्यों आ गए, ऐसे बोलने लग जाते हैं, और कई बार क्या होता है इतना हॉर्न जोर से क्यों बजा रहा है।
0: ये
1: तो आम बातें हैं जो रोज ही हर कोई बोलता है।
0: हाँ, लेकिन आज एक छोटा सा सवाल खुद से भी पूछते हैं, क्या सड़क पर हमारा अपना व्यवहार ही भी उतना अच्छा है जितना हम दूसरों से चाहते हैं, हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि सड़क केवल हमारी नहीं है, एक साझा स्थान है जहाँ कार चालक, दोपहिया वाहन चालक, पैदल यात्री, बच्चे, बुजुर्ग और साइकिल चालक सभी एक दूसरे के साथ जगह बांटनी होती है। सड़क सुरक्षा संबंधी निर्देश भी इसी बात पर जोर देते हैं कि हमें सतर्क और दूसरों के प्रति संवेदनशील भी रहना चाहिए,
1: और यहीं से आता है सड़क का शिष्टाचार, यानी कि नियम हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, और लेकिन शिष्टाचार हमें ये सिखाता है कि दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए हमें।
0: यानी दोस्तों, दिशा सूचक देना सिर्फ एक यातायात नियम नहीं है, इससे सामने और पीछे चल रहे लोगों को पहले से पता चल जाता है कि हम आगे किस दिशा में मुड़ने वाले हैं या जाने वाले हैं। इसी तरह अगर कोई वाहन सुरक्षित तरीके से हमारी लेन में शामिल होना चाहता है तो हर बार उसे रोकने के बजाय जहां संभव हो उसे थोड़ी जगह देना भी सड़क पर हमारे शिष्ट और जिम्मेदार व्यवहार की निशानी है।
1: लेकिन देखो अंतिफा, देखो कभी कभी हमारी जो परेशानियां सिर्फ यातायात की नहीं होती, बल्कि हमारा अपना गुस्सा और अधीरता जो भी होती है वो यातायात को और तनावपूर्ण बना देती है। लगातार हॉर्न बजाना, बहुत कम दूरी और साथ में बनाकर पीछे चलना, अचानक लेन अपनी चेंज कर देना अपनी, है ना, और उसके बाद दूसरे चालक को रास्ता ना देना, ये सब सड़क शिष्टाचार के बिल्कुल खिलाफ है।
0: इसलिए सड़क पर हमारी छोटी छोटी आदतें दोस्तों मायने रखती हैं, सुरक्षित दूरी रखना, समय पर दिशा सूचक देना, बिना जरूरत हॉर्न ना बजाना, पैदल यात्री को रास्ता देना और सामने वाले की गलती पर तुरंत गुस्से में प्रतिक्रिया ना देना।
1: और दीपा देखो, ये समझना है कि बदलाव की शुरुआत हमेशा किसी और से नहीं होती बल्कि हमसे खुद से होती है।
0: तो अगली बार जब हम सड़क पर निकले, याद रखें सड़क पर हमें एक दूसरे के मुकाबला नहीं करना है, एक दूसरे के साथ सुरक्षित रहना है। सुरक्षित चलिए, संयम से चलिए और दूसरों को भी सुरक्षित चलने का मौका दीजिए।

0: और दीपा देखो एक मेल और आ गया हमारे पास, ये आया है गाजियाबाद से, योगांशु कौशिक का। इन्होंने लिखा है
1: क्या लिखते
0: कि
1: हैं?
0: इन्होंने लिखा है कि खास तौर पर कि मैं एफएम गोल्ड बचपन से सुनता आ रहा हूँ, आपके सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं। वही, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक
0: और
1: यू।
0: मेरा एक्टिव टाइम जो होता है शाम को होता है, जिसमें मैं 7-8 घंटे कम से कम किलोमीटर वॉक करता हूँ और फिट रहने के लिए कोशिश करता हूँ कि मैं फिट रहूँ, है ना।
1: बहुत अच्छी
0: बहुत अच्छी
1: बात
0: बात है,
1: है।
0: बहुत अच्छी इन्होंने बात कही है। और ये भी होना भी चाहिए, जरूरी नहीं कि आप सुबह ही एक्सरसाइज करें, आप शाम को भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और साथ में मैं ये कहूंगी कि अब मैं एक बात करना चाहती हूँ कि दुनिया तो जीत ली के खुद को जीता हमने कभी,
1: ये तो
0: कहते
1: बड़ी बात
0: हैं।
1: कही सिमरन तुमने।
0: बिल्कुल।
1: कहते
0: और
1: हैं इंसान की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब वह दुनिया को नहीं बल्कि खुद को जीत लेता है।
0: हम सब जिंदगी की दौड़ में आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को अच्छा चाहिए, घर चाहिए, है ना, किसी को बड़ी नौकरी, किसी को नाम पहचान, और सबको पाने की कोशिश में हम अक्सर एक सवाल भूल जाते हैं, क्या हमने खुद को समझा है कभी?
1: दुनिया की नजरों में सफल होना आसान हो सकता है, लेकिन लेकिन अपने डर पर जीत पाना, अपने गुस्से को काबू करना, अपनी कमियों को स्वीकार करना और मुश्किल वक्त में भी खुद पर भरोसा बनाए रखना, यही असली

0: मेल
1: हाँ,
0: आ गया लगता है जैसे।
1: एक मेल आई है। इद्रीस सैफी जी लिखते हैं कि जो सुबह का समय होता है वो उनका बहुत एक्टिव रहता है, वो पार्क टहलने जाते हैं और वहां पे उनका अच्छा समय गुजरता है।
0: बहुत अच्छी बात है। और साथ में मेरे पास भी एक मेल आया है, वो लिखते हैं सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, ये शांति नगर सोनीपत से हैं। और इन्होंने लिखा है कि दीपा जी और आप, मतलब बहुत बहुत आपको बधाई हो, कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा और लग रहा है, और साथ में कार्यक्रम की प्रस्तुति सदाबहार गीत बहुत सुंदर लग रहे हैं, अति उत्तम प्रस्तुति है आपकी, अनमोल बातें और गीतों की तो उन्होंने तारीफ कर ही दी है। और इसके अलावा इन्होंने लिखा है कि दिल से बहुत बड़ी बड़ी बधाई और साथ में आपका जीवन भी बहुत अच्छा रहे और ऐसी तरह से एक्टिव रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और साथ में एक और मेल आ गया है मेरे पास, ये है मेरठ से सुनैना गुप्ता का। इन्होंने भी लिखा है कि मेरा जो सबसे सही समय होता है, जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं बहुत एनर्जी फील करती हूँ और साथ में पार्क तो मैं जाती हूँ, एक्सरसाइज भी करती हूँ, अगर ना जा पाऊँ तो घर में छोटी मोटी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, तो इसलिए मेरा समय जो है सुबह का बहुत अच्छा होता है। तो चलो सुबह के समय के साथ एक और गाना भी सुनवा देते हैं।

0: और देखो दीपा, समय जो घड़ी हमारी इशारा कर रही है कि हमारे कार्यक्रम का वक्त समाप्त होने को है, तो लेते हैं विदा। नमस्कार। नमस्कार।
1: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। अठारहवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज दोपहर नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। दो दिन के सम्मेलन में 11 पूर्ण सदस्य देश और 10 साझेदार देशों सहित कुल 21 देश हिस्सा ले रहे हैं। 11 पूर्ण सदस्य देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिश्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया शामिल हैं, जबकि बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम साझेदार देश के रूप में भाग ले रहे हैं। और अब अधिक जानकारी के लिए

0: चलते हैं भारत मंडपम, जहां पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। मौजूद है हमारे संवाददाता अंकित। अंकित, प्रधानमंत्री ने अब तक किन किन देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है इस शिखर सम्मेलन से अलग, और अभी और किन देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता का आज कार्यक्रम है?
1: हाँ जागृति, आज का दिन राजनयिक संबंधों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब

0: प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और वियतनाम के प्रधानमंत्री के साथ बैठकें की। इथियोपिया और मलेशिया ने भारत के साथ रक्षा सहयोग को और मजबूत करने में रुचि जताई है। इसके अलावा इथियोपिया ने विशेष रूप से भारतीय खनन कंपनियों को आमंत्रित किया है। वहीं मलेशिया के साथ सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में मौजूद अवसरों पर चर्चा हुई। जागृति आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक अहम द्विपक्षीय बैठक होने का कार्यक्रम है। यह राष्ट्रपति जिनपिंग की करीब 7 वर्षों में भारत की पहली यात्रा है। जी जागृति
1: जी, धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। और इससे पहले आज ही सुबह विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम गेब्रेसियस भी इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। इस बीच चाइना सदर्न एयरलाइंस इस महीने की 21 तारीख से क्वांगचो और नई दिल्ली के बीच नियमित यात्री उड़ानें फिर शुरू करेगी। इसके साथ ही 6 साल से बंद ये हवाई सेवा बहाल हो जाएगी। कोविड महामारी के बाद वर्ष 2020 में भारत और चीन के बीच हवाई सेवाएं निलंबित कर दी गई थी। ये सेवा ऐसे समय फिर शुरू हो रही है जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रूपये की पेंशन सुनिश्चित की गई है। सऊदी अरब ने ड्रोन हमले के एक दिन बाद देश भर में फैली एक बड़ी तेल पाइपलाइन को बंद कर दिया है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि हमले के बाद ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को बंद कर दिया गया है। ये तेल पाइपलाइन ऐसे समय में बंद की गई है जब यमन के हौसी विद्रोहियों ने मोखा बंदरगाह और पेरिम द्वीप पर कब्जा कर लिया है, जिससे पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल गया है। बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य दुनिया के प्रमुख नौवहन मार्गो में से एक है। भारत ने महिला जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। भारत की ओर से सुप्रिया ने हैट्रिक लगाई जबकि मधु और सुखवीर कौर ने 1-1 गोल दागा। दूसरे सेमीफाइनल में चीन का सामना जापान से होगा। फाइनल में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तेलंगाना और विदर्भ में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी कल तक तेज बारिश होने की संभावना है। ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, कराईकल, विदर्भ, बिहार, राजस्थान और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल तक आंधी तूफान और बिजली की चमकने की स्थिति बनी रहेगी। दिल्ली में आज शाम हल्की बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The 18th BRICS summit is set to begin in New Delhi this afternoon. The two-day grand event will bring together 11 major emerging and developing economies. During the high-level event, leaders of the BRICS member countries are expected to discuss key issues including global governance, multilateralism, trade and investment, technology, food and energy security, healthcare, disaster resilience and critical supply chains. Several key world leaders will participate in the high-profile summit. Prime Minister Narendra Modi will be joined by Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, South African President Cyril Ramaphosa, Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi, Indonesian President Prabowo Subianto, and Iranian President Masoud Pezeshkian. The summit will begin with a closed session for BRICS member countries on inclusive global governance and strengthening multilateralism. Leaders of the BRICS member countries will also visit the Bharat Innovates exhibition at Bharat Mandapam. This will be followed by a joint tree planting ceremony and a gala dinner hosted by Prime Minister Modi. Let's cross over live to our correspondent Anupam Mishra, who's at the venue of the summit, that is Bharat Mandapam in New Delhi. So Anupam, can you give us a sense and the overall vibe of the venue?
3: Yes, Shagun, the BRICS summit is all set to begin here in Bharat Mandapam and nearly

जहां हम बात करते हैं एक ऐसी फिल्म की जिसमें आ अपने ही दौर में एक दर्शकों के लिए दिल पर एक छाप छोड़ दी थी। जी हां, आज की फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि इसका नाम ही अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दर्शाता है। जी हाँ, 1979 में रिलीज हुई ये फिल्म की कहानी रोमांस, इमोशंस, परिवार, जंगल और एक्शन के साथ इंसाफ की कहानी है, जिसमें धर्मेंद्र, रेखा और विनोद बेहरा ने अभिनय निभाया। अरे बाबा, मैंने तो शायद लगता है बातों बातों में सारे क्लू दे डाले हैं। तो चलिए श्रोताओं, आज के इस फिल्मी सफर को शुरू करते हैं आप ही के साथ। तो फोन उठाएं, हमें आज के इस कार्यक्रम में किस फिल्म की हम बात कर रहे हैं और किस गानों को लेकर हम आए हैं, किस फिल्म के गानों को लेकर आए हैं, हमें जल्दी से मैसेज करें हमारे इस ईमेल आईडी पर। जी हाँ, हमारा ईमेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। जो भी सबसे पहले हमें सही जवाब देगा, जैसे कि आप जानते हैं रहना है तो ये खेल, तो हमें कुछ तो कहना है, जो भी सबसे पहले हमें सही जवाब देगा वो हमारे आज के इस कार्यक्रम का फेवरेट श्रोता होगा। तो देरी किस बात की, जल्दी से आप फोन उठाएं और हमें मैसेज भेजें। इंतजार रहेगा इस गाने के साथ।

जी हाँ, हम जिस फिल्म की बात लेकर आज हम आए हैं, हमारे हमारे पास बहुत सारे जवाब आ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले जिसने हमें जवाब दिया है वो है हीरामणि वर्मा जी, धनरेगी भाटापारा से। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत बहुत बधाई आपको कि आज आप हमारे इस लाइव कार्यक्रम के हमारे फेवरेट श्रोता हैं। तो दोस्तों, आज के इस फिल्मी सफर में हम 1979 की फिल्म कर्तव्य की बात कर रहे हैं, एक ऐसी फिल्म जिसमें धर्मेंद्र का दमदार अंदाज, रेखा की खूबसूरत अभिनय, विनोद मेहरा जी का महत्वपूर्ण दमदार किरदार है और निरूपा रॉय का इमोशनल टच और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और साथ ही लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, आशा भोसले और उषा मंगेशकर, यानी कि एक ही फिल्म में उस दौर की कई महान आवाजों का संगम। दोस्तों, कर्तव्य की कहानी का केंद्र है विजय, जिसका किरदार निभाया था धर्मेंद्र जी ने, विजय नाम से, और एक वन अधिकारी हैं। और कहानी जंगल, वन्य जीवों और अपराधी की दुनिया से जुड़ती है। विजय के सामने सिर्फ अपनी नौकरी निभाने की चुनौती ही नहीं, बल्कि अपने परिवार और अतीत से जुड़े सवालों के जवाब तलाशने की भी है। यही वजह है कि शायद जहां फिल्म का नाम कर्तव्य अपना असली अर्थ सामने लाता है, क्योंकि कर्तव्य सिर्फ नौकरी निभाना ही नहीं होता, कर्तव्य सही और गलत के बीच सही फैसला लेना भी होता है।

जी हाँ, क्या आप जानते हैं विनोद मेहरा वाले ग्रे शर्ट द विलन यानी कि दुष्यंत के रोल के लिए मेकर्स की जो पहली पसंद थी वो जितेंद्र जी थे। जितेंद्र साहब इस रोल के लिए पहले मान भी गए थे लेकिन बाद में उन्होंने बैकआउट कर दिया। उन्हें डर था कि एक नेगेटिव रोल करने से उनकी चॉकलेटी जो छवि है वो हीरो वाली इमेज खराब हो जाएगी। और दिग्गज अभिनेता अशोक कुमार ने भी इस फिल्म में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हेड के रूप में स्पेशल अपीयरेंस भी दी है लेकिन उनका नाम फिल्म के टाइटल स्क्रीन में नहीं दिखाया गया। और इसी तरह से बहुत सारे मैसेज हमारे पास आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी श्रोताओं का हमारे कार्यक्रम सुनने के लिए और हमें अपनी हौसला अफजाई मिल जाती है अगर आप हमें मैसेज करते हैं। और स्वर्ण सिंह, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुरनाल, अविराज जी ने हमें मैसेज किया है अब इस कार्यक्रम में। और उसी तरह से हमें भूषण खेरा जी ने मैसेज किया है पंजाब से और विशु शालिनी खेड़ा और इन सभी ने हमें मैसेज किया है। बिट्टू गंगेजा ने भी, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी, निमित आहूजा, इन्होंने हमें मैसेज, थोड़े से सुदर्शन शाह जी ने हमें मैसेज किया है और नितेश देवांगन जी ने, दुर्गा, पराग, पूना, कृष्णा देवांगन जी ने हमें मैसेज किए हैं, राजकुमार जी ने हमें मैसेज किया है और सुदर्शन मुखी जी ने, नीता, सिमरन, शांति नगर, सोनीपत जी हमें मैसेज कर रही हैं और हीरामणि जी ने हमें किया ही था, डोल राणा जी ने मैसेज किया, प्रकाश वर्मा जी ने, प्रिंस निखिल, यशस्वी, अन्नपूर्णा जी ने मैसेज किया है, आर कुमार जी ने मैसेज, पिंकी मिंटू पंजाब से, वनवीर खेड़ा और आरती लवली, पिंकी और लवली ने किया है। तो हम सुनते हैं अब ये अगला नगमा।

जिन्होंने अभी अभी रेडियो ऑन किया है उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं आरजे रैना के साथ कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की जो फिल्म है वो है 1979 की फिल्म कर्तव्य। इस फिल्म की जो से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह है कि फिल्म कन्नड़ सिनेमा की मशहूर फिल्म गंडागुड़ी की रीमेक है और 11 मई 1979 की रिलीज हुई यह फिल्म बॉक्स ऑफिस की सुपरहिट फिल्म साबित हुई। चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा उस दौर में बच्चों और परिवारों के बीच ब्लॉकबस्टर गाना हिट हुआ।

जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म कर्तव्य की, और फिल्म बनने के दौरान बहुत सारी चीजें उथल पुथल हुई, जैसे कि विनोद मेहरा की निजी जिंदगी में काफी उथल पुथल रही। इस फिल्म के दौरान मीना से शादी की थी, वहीं दूसरी तरफ एक खतरनाक स्टंट सीन करते समय उनका एक हाथ और एक पैर फ्रैक्चर हो गया था। फिल्म में सितारों की जिंदगी कैमरे के सामने जिंदगी ग्लैमरस तो होती है, लेकिन कैमरे के पीछे उतनी ही मेहनत और मुश्किलें होती हैं। और हमारे पास बहुत सारे इस तरह से मैसेज आए हैं। धर्मेंद्र छिप्पा जी का मैसेज आया है हमारे राजस्थान से, कपिल ईशान पूजा जी का मैसेज आया है, और इशाक मोहम्मद जी का हमें आया है, आफरीन खतीजा बेगम, नीलोफर वातिमा और हमारे पास हमें मैसेज कर रहे हैं, देवशंकर तमुरिया जी का मैसेज आया है आईके फिल्म से। जी बिल्कुल सही जवाब आपका वही है, छत्तीसगढ़ से हमें मैसेज कर रहे हैं डोडी लोहरा बहलोद, देवशंकर तमुरिया जय, तुषार डॉली बेबी पूजा और राधिका प्रभा देवी, मास्टर अल्प कबीर। और फागुनी राम यादव जी हमें मैसेज कर रहे हैं, और फागु राम ज्योति ओजस्वी, और इसी तरह से सुधाकर जाधव जी ने हमें मैसेज किया है, प्रशांत राधे और राजे जाधव देशमुख और सचिव संचित देशमुख, और इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे मैसेज। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के मैसेज आने का, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरीके से आप हमें मैसेज करते रहिएगा, और सुनते हैं अगला ये नगमा।

गुरमीत जी का साउथ एक्सटेंशन से हमें मैसेज आया है, और इसी तरीके से स्वर्ण सिंह जी का, दलजीत राजीव, गुरनूर, गुरनाल अविराज जी, संजय ढींगरा ढिंगिया जी, देवशंकर तमुरिया जी का, और धर्मेंद्र छिप्पा जी का, संदीप मक्कर जी का, राजकुमार जी का, संदीप मक्कर, अनिल मोहन जी का, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी तरीके से अजीत भावस्कर का भी मैसेज आया है, और राधेश्याम देवांगन जी का, और लाल गिरी जी का, फारूक अली खान का, धर्मेंद्र छिप्पा जी का, दिग्दर्शन जी का, पीएस नावस्कर का, भूषण खेरा जी का, कमलकंत का, स्वर्ण सिंह का, धर्मेंद्र छिप्पा, अभी बहुत सारे मैसेज हमारे पास आए, बहुत बहुत शुक्रिया। जिनका हम नाम नहीं ले पाए तो हमें माफ कर दीजिएगा, हमारी कोशिश रहती है कि हम सभी श्रोताओं का नाम इस कार्यक्रम में शामिल करें।

तो दोस्तों, जिंदगी में रिश्ते बहुत बहुत कुछ कह देते हैं, लेकिन जिम्मेदारियां हमें निभानी पड़ती हैं, क्योंकि अधिकार हमें खुशी दे सकते हैं लेकिन कर्तव्य हमें पहचान देता है। इसी खूबसूरत सोच के साथ आज रैना तवरका लेती है आप इस कार्यक्रम से विदा। फिर मिलेंगे एक और यादगार फिल्म की कहानी, उसके गीत, अनसुने किस्सों के साथ। जाते जाते बस इतना ही कहूंगी, कुछ करें ऐसा जो दूसरों के चेहरे पर दे मुस्कुराहट और आपके चेहरे को दे सुकून। एक अच्छा नागरिक बने। सुनते रहें आपका अपना आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ, क्योंकि हर आवाज कुछ कहती है मेरे दोस्त।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। और अब स्टूडियो की घड़ी के अनुसार समय हो रहा है हमारे पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश और हिंदी समाचारों का। तो आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे नाल मैं यादविंदर सिंह। पहला बुलेटिन दिया खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवी दिल्ली च इथोपिया ते मलेशिया दे प्रधानमंत्रियों समेत कई ब्रिक्स नेतावां नाल दुवल्ली गलबात कीती। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ने आज अपने 7 साल पूरे कर ले ने। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी दे दूजे पड़ा तहत 18,70,000 मकानां नूं मंजूरी दित्ती है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश पर्व अज धार्मिक श्रद्धा ते उत्साह नाल मनाया जा रहा है। ते हाकी विच भारत दक्षिणी कोरिया नूं 5-1 नाल हरा के महिला जूनियर एशिया कप हाकी टूर्नामेंट के फाइनल च पहुंच गया है। हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवी दिल्ली च 18वें ब्रिक्स सम्मेलन तो वक्त इथोपिया के प्रधानमंत्री डॉ अबी अहमद अली नाल दुवल्ली गलबात कीती। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोवां नेतावां दरमियान हुई चर्चा का उद्देश दुवल्ली रणनीतिक भाईवाली नूं होर मजबूत करना सी। दोवां नेतावां ने आर्थिक सहयोग, रक्षा अते सुरक्षा भाईवाली ते समर्था निर्माण समेत मुख खेतरां च प्रगति की समीक्षा की। दोवां नेतावां ने आपसी हित के खेतरी ते आलमी मुद्दयां उत्ते भी विचार सांझे कीते। बहुपक्षी फोरमां च नजदीकी सहयोग प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराई। मीटिंग दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 18वें ब्रिक्स

0: tournament in 2023 and 2024. In US Open tennis, 8 seed Ben Shelton has set up men's singles title clash with top seed Alexander Zverev. Zverev of Germany defeated unseeded Russian player Karen Khachanov 6-3, 7-6, 7-6 in first semi-final this morning. Later in the other last four match, Ben Shelton overpowered 11-seeded Francis Tiafoe 4-6, 6-3, 6-3, 7-5 in an all-American clash. In women's singles, defending champion Arina Sabalenka will take on second seed Alina Rybakina in title clash in New York later tonight. Top seed Belarusian Sabalenka booked her place in the final with a 7-5, 6-2 victory over third seed American Jessica Pegula, while Rybakina from Kazakhstan defeated fourth seeded Coco Gauff in the semi-finals. Rybakina and Sabalenka have met 17 times, with Sabalenka leading their head-to-head record 10-7. In Grand Slam finals, the two have also faced each other at the Australian Open, with Rybakina winning in 2026 and Sabalenka claiming the title in 2023. Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh and Lok Sabha Speaker Om Birla have extended their wishes to the countrymen on the occasion of Prakash Purab of Sri Guru Granth Singh Sahib today. In a social media post, Mr. Shah said that the sacred scripture encompasses invaluable teachings on service, sacrifice and equality. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. BRICS summit under India's presidency to begin shortly in New Delhi. Focus on global governance, multilateralism, trade, security and supply chains. World leaders assemble for 2 days summit. Prime Minister Narendra Modi to hold bilateral talks with Chinese President Xi Jinping this evening. Prime Minister Modi holds bilaterals with his Malaysian, Vietnamese and Ethiopian counterparts. Also confers with Crown Prince of Abu Dhabi. Houthi rebels in Yemen see strategic islands tightening grip on Red Sea shipping route. Saudi Arabia shuts vital pipeline after attack. Orange alert for heavy to very heavy rainfall over Chhattisgarh, Telangana and Vidarbha for today. And in hockey, Indian women team enters Junior Asia Cup 2026 final, defeating South Korea 5-1 in Mochi, China. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत की अध्यक्षता में 2 दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए विश्व के नेता नई दिल्ली पहुंचे। अब से कुछ ही देर में शुरू होगा सम्मेलन। वैश्विक शासन, बहुपक्षवाद, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया, वियतनाम और इथियोपिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। अबू धाबी के युवराज के साथ भी मुलाकात की। यमन में हौसी विद्रोहियों के महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत। सऊदी अरब ने हमले के बाद महत्वपूर्ण पाइपलाइन बंद की। छत्तीसगढ़, तेलंगाना और विदर्भ में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला टीम ने चीन के मोखी में दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराकर जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। और अब समाचार विस्तार से। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अब से कुछ ही देर में नई दिल्ली के भारत मंडप में शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए हैं। 2 दिन के सम्मेलन में 11 पूर्ण सदस्य देश और 10 साझेदार देशों सहित कुल 21 देश हिस्सा ले रहे हैं। 11 पूर्ण सदस्य देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिश्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया शामिल हैं, जबकि बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम साझेदार देश के रूप में भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में वैश्विक शासन, बहुपक्षवाद, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, खाद्य एवं सुरक्षा, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन और महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत की अध्यक्षता में हो रहे इस शिखर सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। और अब अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं भारत मंडपम में मौजूद हमारे संवाददाता।

0: था अंकित से। जी अंकित।
1: जी जागृति, देखिए।
0: हेलो अंकित, अभी आप शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल पर मौजूद हैं और ये बताइए कि इस समय कार्यक्रम स्थल का माहौल कैसा है और इस सम्मेलन के बारे में आपके पास क्या कुछ अन्य जानकारियां हैं?
1: जी जागृति, देखिए ब्रिक्स, इस समय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो आज का सत्र है अब से कुछ देर में शुरू होने वाला है।
0: जी,
1: विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष सम्मेलन स्थल पर पहुंच रहे हैं। अब से कुछ देर बाद 11 सदस्य देशों के नेता क्लोज डोर सेशन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करने के मुद्दे पर विचार विमर्श करेंगे। ये नेता इसके बाद भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। इसके बाद वे संयुक्त रूप से पौधारोपण करेंगे और फैमिली फोटो के लिए भी एकत्रित होंगे।
0: जी,
1: शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले ब्रिक्स नेताओं के लिए सम्मान में भव्य रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। ये देखिए, भारत की अध्यक्षता में यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया एक महत्वपूर्ण बदलाव के दौर से गुजर रही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था इस समय आर्थिक बिखराव, तकनीकी बदलाव और भू राजनीतिक अनिश्चितता का सामना कर रही है। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन और संसाधनों पर बढ़ता दबाव इन चुनौतियों को और जटिल बना रहे हैं। इन आपस में जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए ऐसे सहयोग की जरूरत है जो समावेशी व्यवहार और विभिन्न देशों की परिस्थितियों के अनुरूप हो। देखिए, ब्रिक्स इन चुनौतियों से निपटने के लिए संवाद और समन्वित कार्रवाई के माध्यम से एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। इसकी वजह यह भी है कि ब्रिक्स देश दुनिया की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा वैश्विक GDP में इन देशों की हिस्सेदारी करीब 40% और वैश्विक व्यापार में करीब 25% हिस्सेदारी है। जी जागृति।
0: जी धन्यवाद अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। सम्मेलन में भाग लेने के लिए शी जिनफिंग आज नई दिल्ली पहुंचे हैं और अब अधिक जानकारी के लिए हम बात करते हैं हमारे संवाददाता आनंद से। जी आनंद, प्रधानमंत्री आज शिखर सम्मेलन से अलग अब तक किन किन देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर चुके हैं और अगर आज की बात करें तो किन देशों के साथ अभी द्विपक्षीय वार्ता होने का कार्यक्रम है?
2: जी जागृति, आज का दिन भारत के लिए द्विपक्षीय और राजनयिक संबंधों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का पहला सत्र शुरू होने वाला है।
0: जी,
2: आज सुबह से ही ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के नेताओं के साथ लगातार द्विपक्षीय बैठकें कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और वियतनाम के प्रधानमंत्री के साथ बैठकें की। इथियोपिया मलेशिया ने भारत के साथ रक्षा सहयोग को और मजबूत करने में रुचि जताई है। इथियोपिया के ने विशेष रूप से भारतीय खनन कंपनियों को आमंत्रित किया है। वहीं मलेशिया के साथ सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में मौजूदा अवसरों पर चर्चा हुई। अगर आज हम शाम के कार्यक्रम की बात करें तो जागृति, आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक होने का कार्यक्रम है। यह राष्ट्रपति जिनफिंग की करीब 7 वर्षों में भारत की यह पहली यात्रा है। दोनों नेताओं के बीच बातचीत मुख्य रूप से सीमा पर तनाव कम करने और व्यापार असंतुलन के मुद्दों पर केंद्रित रहने की संभावना है। जी जागृति।
0: जी आनंद, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। बेलारूस के विदेश मंत्री मार्क्सिम रिजनकोफ आज नई दिल्ली पहुंचे। भारत और बेलारूस के संबंध प्रगाढ़ और मैत्रीपूर्ण हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर सहयोग लगातार बढ़ रहा है। इससे पहले आज ही सुबह विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉ टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस भी सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ मुलाकात की। इससे पहले शिखर सम्मेलन से अलग कल उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की थी। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रम पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। इस बीच चाइना सदर्न एयरलाइंस इस महीने की 21 तारीख से ग्वांगशो और नई दिल्ली के बीच नियमित यात्री उड़ानें फिर शुरू करेगी। इसके साथ ही 6 साल से बंद ये हवाई सेवा बहाल हो जाएगी। कोविड महामारी के बाद वर्ष 2020 में भारत और

0: इनके बीच हवाई सेवाएं निलंबित कर दी गई थी। ये सेवा चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के भारत दौरे के बीच शुरू हो रही है। इस साल मार्च में भारतीय विमानन कंपनी इंडिगो ने भी शंघाई और कोलकाता के बीच दैनिक उड़ानें शुरू की थी, जिससे दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क और मजबूत हुआ है। इस बीच ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को देखते हुए आज रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन और नियंत्रित आवागमन लागू किया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन विशेषकर मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@airnews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आयोजित भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का उद्देश्य उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों में विकसित नवाचारों को दुनिया तक पहुंचाना है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रदर्शनी में आए सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत करना देश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की नवाचार व्यवस्था तेजी से विकसित हुई है।
2: इंडियाज इनोवेशन,
3: भारत का नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र तेजी से विकसित हुआ है। भारत इनोवेटिव्स की यात्रा ने नीस में आयोजित अपने पहले वैश्विक प्रदर्शन के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव स्थापित किया है। भारत के ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने के साथ हम अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में एक मजबूत साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रयोगशाला से बाजार तक और भारत से विश्व तक।
2: फ्रॉम लैब टू मार्केट, फ्रॉम इंडिया टू वर्ल्ड।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रुपये की पेंशन सुनिश्चित की गई है। सऊदी अरब ने ड्रोन हमले के एक दिन बाद देश भर में फैली एक बड़ी तेल पाइपलाइन बंद कर दी है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को बंद कर दिया गया है। इस तेल पाइपलाइन को ऐसे समय में बंद किया गया है जब यमन के हौसी विद्रोहियों ने मोखा बंदरगाह और पेरिम द्वीप पर कब्जा कर लिया है, जिससे पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल गया है। बाब अल मंदेब जल डमरू बध्य दुनिया के प्रमुख नौवहन मार्गों में से एक है। पंजाब पुलिस के गैंगस्टर रोधी कार्यबल एजीटीएफ और देश छोड़कर भागे लोगों की निगरानी और प्रत्यर्पण की शाखा ओएफटीईसी ने केंद्रीय एजेंसियों के समन्वय से फरार अपराधी अमृतपाल सिंह उर्फ अमृत दलम को मोल्दोवा गणराज्य से भारत प्रत्यर्पित कराने में सफलता हासिल की है। गैंगस्टर रोधी कार्यबल के पुलिस अधीक्षक विक्रमजीत सिंह बराड़ के नेतृत्व में पंजाब पुलिस की 4 सदस्यीय टीम आज सुबह उसे भारत लेकर आई। बिहार में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, हालांकि कई इलाके अब भी प्रभावित हैं। राज्य के 14 जिलों के 2,000 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान जारी है।
4: प्रदेश में गंगा, सोन, बागमती, घाघरा और पुनपुन समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में गिरावट जारी है। हालांकि गंगा और पुनपुन कई स्थानों पर अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार गंगा का जलस्तर पटना के गांधी घाट समेत राज्य के लगभग सभी स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर है। पुनपुन नदी श्रीपालपुर में खतरे के निशान से 1 मीटर से अधिक ऊपर बह रही है। जलस्तर में कमी के साथ गंगा, गंडक, कोसी और सोन के तटवर्ती इलाकों में कटाव का खतरा बढ़ गया है। जल संसाधन विभाग ने संवेदनशील तटबंधों और कटाव संभावित स्थलों पर निगरानी बढ़ा दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तेलंगाना और विदर्भ में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, कराईकल, विदर्भ, बिहार, राजस्थान और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल तक आंधी तूफान की आशंका है। दिल्ली में आज शाम हल्की बारिश का अनुमान है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने तमिल विद्वान प्रोफेसर सोलोमन पपैया के निधन पर

0: पर शोक व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि प्रोफेसर पपैया की वाक्पटुता और विद्वता ने देश की साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया है। गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। गृहमंत्री ने कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की शिक्षाएं सेवा, त्याग, समानता, करुणा और मानवता की भावना को बढ़ावा देती हैं और समाज को मानव कल्याण के लिए प्रेरित करती हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। महिला जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत ने फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। भारत की ओर से सुप्रिया ने हैट्रिक लगाई जबकि मधु और सुखवीर कौर ने 1-1 गोल दागा। फाइनल में भारत का मुकाबला मेजबान चीन से होगा। इससे पहले पुरुषों के जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत ने कल पहले सेमीफाइनल में मलेशिया को 3-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में अमरीका के बेन शेल्टन का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। महिला सिंगल्स में मौजूदा चैंपियन बेलारूस की आर्याना सबालेंका आज रात फाइनल में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना का सामना करेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की अध्यक्षता में 2 दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए विश्व के नेता नई दिल्ली पहुंचे। अब से कुछ ही देर में शुरू होगा सम्मेलन। वैश्विक शासन, बहुपक्षवाद, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया, वियतनाम और इथियोपिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। अबूधाबी के युवराज के साथ भी मुलाकात की। यमन में हौसी विद्रोहियों के महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत। और भारतीय महिला टीम ने चीन के मोकी में दक्षिण कोरिया को हराकर जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Nerentes Akashwani Delhi na National News Service program ulangin chuet pin medium wave 100 gabgena 25.5 kHz medium wave turgena 25.5 kHz fm rga 8.1 MHz dona mobile app news on air ga diwa akashwani kargilin waspani mit sotniz na fetson sukkasata balti program gen nazar tarkaskat program ansir tangan pin gulzar hussein na program projukhan pin aqil hussein

شاچن پلا عباس ری گل پھو

रंगोली फिल्म डायलॉग आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। आज की मेरी पसंद प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मोहम्मद रफी की आवाज में एक मरतबा फिर शंकर जयकिशन की मौसीकी से जाए नगमा फिल्म है पगला कहीं का।

सुबाई लोकगीतों के प्रोग्राम में सामिन आज आप सुन रहे थे सपन मुखर्जी के गाए बंगला लोकगीत। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम अब खत्म होता है। मीडियम में 1071 किलोहर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन आईआर और डीडी फ्री डिश पर सामिन इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। पेश खिदमत है फिल्मी नगमे। फिल्मी नगमों के आज के प्रोग्राम में हम आपको सुना रहे हैं शंकर जयकिशन की मौसीकी से जुड़े कुछ फिल्मी नगमे। आज शंकर जयकिशन की जोड़ी के जयकिशन जी का यौम वफात है।

प्यार ही प्यार, इस फिल्म का नाम आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, मुस्कुराते शंकर जयकिशन। और समझ लीजिए, अब सुनिए पहचान फिल्म के नगमा मुकेश, सुमन कल्याणपुर और शारदा की आवाजों में।

श्री 420 इस फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे मन्ना डे आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। नगमा निगार थे शैलेंद्र मौसीकार शंकर जयकिशन और सुनी प्रिंस फिल्म का यह नगमा मोहम्मद रफी की आवाज में।

राजकुमार फिल्म का नाम आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। सामिन, आज की फिल्म मौसीकी के प्रोग्राम में हम आपको सुनवा रहे हैं शंकर जयकिशन की मौसीकी से सजे कुछ फिल्मी नामे। आज शंकर जयकिशन की जोड़ी के जयकिशन जी का यौम वफात है।

चंद्रमा के सितारों में लहरा रही थी। ये जलवा ये नखरा, ये जलवा ये नखरा, इन्हें तू मैं जानता।

फूल बनके इन्हीं

अस्तर जयपुरी का लिखा है गीत आप सुन रहे थे महमूद रफी की आवाज में। फिल्म थी लव इन टोक्यो। प्रोग्राम की अगली पेशकश मन्ना डे की आवाज में सुनिए। मेरा नाम जोकर है, फिल्म का नगमा, नगमा ने गा नीरज, मौसीकार एक मरता फिर शंकर जयकिशन।

बात है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है थोड़ा जो पैसा है थोड़ा जो किस्मत है कर कर नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है हीरो से जोकर बन जाना।

0: इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भावता का डर है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भावता का डर है।

शंकर जय किशन की मौसीकी से सजे कुछ फिल्मी नगमे आज शंकर जय किशन की जोड़ी के जय किशन जी का यौम वफात है। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से शाम के 4:50 हुए हैं। खबरें नशर होंगी। ये आकाशवाणी है। अब आम मुदम्मार से खबरें सुनिए। ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के पहले दिन नई दिल्ली एलामिया मंजूर किया गया। वजीर आजम मोदी आज शाम चीन के सर शी जिनपिंग के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। जनाब मोदी ने मलेशिया, वियतनाम और इथोपिया के अपने हम मनसबों के साथ दो तरफा बातचीत की। उन्होंने अबू धाबी के वलीहद के साथ भी बात की। यमन में हौसी बागियों ने बहर अहमर की अहम तजारती गुजरगाह पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए कलीदी अहमियत के हामिल जजीरों पर कब्जा कर लिया है। सऊदी अरब ने हौसियों के हमले के बाद कलीदी तेल पाइपलाइन को बंद कर दिया है। भारतीय मौसमियात ने आज छत्तीसगढ़, तेलंगाना और विदर्भ में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और हॉकी में चीन के मौकी में भारतीय खवातीन टीम जनूबी कोरिया को 1-5 5 से शिकस्त देकर जूनियर एशिया कप 2026 के फाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के पहले दिन आज नई दिल्ली एलामिया अपनाया गया। वजीर आजम मोदी ने ब्रिक्स के तसलसल और नफाज का मैकेनिज्म जारी रखने की तजवीज पेश की ताकि हर साल सदारत की तब्दीली के बावजूद ग्रुप की इदारा जाती रफ्तार बरकरार रह सके। ब्रिक्स सरबराह मीटिंग 2026 के आज के इजलास के दौरान अपने इफ्तिताही कलिमात में वजीर आजम मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये मैकेनिज्म सेरुखी इश्तराक के जरिए सभी इकदाम और महाजर पर अमलावरी जारी रखेगा। भारत की सदारत में ब्रिक्स सरबराह मीटिंग नई दिल्ली में शुरू हो गई है। वजीर आजम मोदी ने आज नई दिल्ली में 18वीं ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के मौके पर इथोपिया के अपने हम मनसब डॉक्टर एबी अहमद अली के साथ दो तरफा बातचीत की। वजारत खारजा ने बयान में कहा कि दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा कलीदी शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के लिए मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने इक्तसादी ताउन, दिफा और सिक्योरिटी के शोबे में शराकतदारी और सलाहियत साजी समेत अहम शोबों में होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान वजीर आजम मोदी ने 18वीं ब्रिक्स सरबराह मीटिंग और इथोपिया की शराकत को सराहा और कहा कि इथोपिया की मौजूदगी ने आलमी खित्ते जनूब की इज्तिमाई आवाज को मजीद मजबूत बनाने में मदद दी है। वजीर आजम ने ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के मौके पर जो भारत की सदारत मुनक़िद हो रही है मलेशिया के अपने हम मनसब अनवर इब्राहिम के साथ भी दो तरफा बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने तजारत, सरमाकारी, दिफा, सिक्योरिटी और आवाम से आवाम के रवाबत समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन में होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया। दोनों रहनुमाओं ने इस साल फरवरी में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मलेशिया के दौरे के नतायज की पेशरफ्त का भी जायजा लिया। जनाब मोदी ने आसियान भारत ताल्लुकात को मुस्तहकम करने में मलेशिया की मुसलसल हिमायत की तारीफ की। वजीर आजम मोदी ने वियतनाम के अपने हम मनसब ली मिंग हूं के साथ मीटिंग में ब्रिक्स में शराकत दार मुल्क है जिससे वियतनाम की शिरकत का खैर मकदम किया। वजारत खारजा ने कहा कि मीटिंग के दौरान दोनों रहनुमाओं को दो तरफा ताल्लुकात में होने वाली पेशरफ्त का जायजा लेने का मौका फराहम हुआ। इस साल मई में वियतनाम के सद टो लाम से भारत के सरकारी दौरे के दौरान दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजीद जामे स्ट्रेटेजिक साझेदारी की सतह तक ले जाया गया था। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया और अपनी शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इरादा किया। वजीर आजम मोदी ने अबू धाबी के वलीयत शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अन्नहयान के साथ भी दो तरफा बातचीत की। वजीर आजम मोदी आज चीन के सर शी जिनपिंग के साथ भी दो तरफा मीटिंग करेंगे। चीन के सर शी जिनपिंग ब्रिक्स सरबराह मीटिंग में शिरकत के लिए नई दिल्ली में है। वजीर आजम मोदी आज चीन के सर के साथ दो तरफा मीटिंग करेंगे। बेलारूस के वजीर खारजा भी आज सुबह 18वीं ब्रिक्स सरबराह मीटिंग में शिरकत के लिए नई दिल्ली पहुंचे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में ईरान के सदर मसूद पेजिशकियान से मुलाकात की। ईरानी सदर ब्रिक्स सरबराह मीटिंग में शिरकत के लिए कौमी राजधानी में हैं। इससे पहले उन्होंने कल वजीर आजम मोदी से मुलाकात की थी। दोनों रहनुमाओं ने मगरब एशिया की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इस दौरान वजीर आजम मोदी ने भारत के

0: उसे देरी ना मौकिफ को दोहराया कि सभी मुआमलात का हल बातचीत और सफारतकारी के जरिए ही निकाला जाना चाहिए। वजीर आजम ने खित्ते में देर पामन और इस्तेहकाम, जहाजरानी और कॉमर्स की आजादी और जहाजरानों की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाने के लिए जारी कोशिशों को बरकरार रखने की जरूरत पर जोर दिया। मरकजी वजीर तालीम प्रहलाद जोशी ने कहा है कि ब्रिक्स सरबराह मीटिंग 2026 में भारत इनोवेट्स नुमाइश उभरते हुए आला तालीम इदारों और तहकीकी इदारों की इख्तिरा को दुनिया तक पहुंचाने के मकसद से डिजाइन की गई है। सोशल मीडिया पर अपने वीडियो पैगाम में जनाब जोशी ने कहा कि नुमाइश में सभी मुअज्जिज शख्सियात का खैर मकदम करना मुल्क के लिए फख्रिया लम्हा है। जनाब जोशी ने मजीद कहा कि वजीर आजम मोदी की दूरंदेश क्यादत में भारत के इख्तिराई निदाम ने तेज रफ्तार तरक्की की है। जनाब जोशी के मुताबिक भारत इनोवेट्स के सफर ने आलमी नखोश छोड़े हैं। सऊदी अरब ने अपनी अहम मशरकी मगरबी तेल पाइपलाइन को आर्जी तौर पर बंद कर दिया है। ये इकदाम मजकूरा तेल पाइपलाइन को ड्रोन हमले का निशाना बनाए जाने के एक दिन बाद किया गया है। सऊदी अरब की वजारत तवानाई ने कहा कि पाइपलाइन को एहतियाती इकदाम के तौर पर बंद किया गया है। मशरकी मगरबी तेल पाइपलाइन सऊदी अरब के लिए इंतहाई अहम है क्योंकि अबनाए हुरमुज में रुकावट के बाद इसी पाइपलाइन के जरिए सऊदी अरब को अपना तेल दरामद करने में मदद मिल रही थी। ये सूरत हाल ईरान की अमरीका और इसराइल के साथ जारी जंग के दौरान पैदा हुई है। सऊदी वजारत खारजा ने कहा कि यह हमला इराक की जानिब से आने वाले कई ड्रोन्स के जरिए किया गया। इराक की हुकूमत ने इस हमले की मजम्मत करते हुए तहकीकात का हुक्म दिया है। ऐसा उस वक्त हुआ है जब ईरान के हिमायत याफ्ता यमन के हौसी बागियों ने यमन की बंदरगाह मोखा और पेरिम के अहम जजीरे पर कब्जा कर लिया है। ये जजीरा आबनाए बाबुल मंदम में वाक़ है जो बुहैर अहमर के जनूबी दाखिली रास्ते पर वाक़ एक इंतहाई अहम मकाम है। आबनाए बाबुल मंदम दुनिया की अहम तरीन बहरी तजारती उदरगाहों में से एक है। हौसियों का यह कब्जा ईरान की उस हिकमत अमली को तकवीत दे सकता है जिसका मकसद आलमी सतह पर तेल और गैस की कीमतों में इजाफा करके अमरीका पर दबाव डालना है। सऊदी हिमायत याफ्ता और बैन अवी तौर पर तस्लीम शुदा यमन की हुकूमत के दो जराए ने बताया कि उनकी फौजें पेरिम जजीरे से पीछे हट गई हैं। जराए के मुताबिक हौसियों ने बहर अहमर के साहिल पर वाक़ जुहाब नामी कस्बे पर भी कब्जा कर लिया है जो इस जजीरे के सामने वाक़ है। चाइना सौतर्न एयरलाइंस ने आज कहा कि वो 6 साल के तातुल को खत्म करते हुए इस महीने की 21 तारीख से गुआंगजाओ और नई दिल्ली के दरमियान बाजाब्ता मुसाफिर खिदमत बहाल करेगी। भारत और चीन के दरमियान हवाई खिदमत साल 2020 में कोविड 19 वबा की शुरुआत के बाद मुअत्तल कर दी गई थी। हवाई खिदमत की बहाली ऐसे वक्त में हो रही है जब चीन के सर शी जिनपिंग ब्रिक्स सरबराह मीटिंग में शिरकत और वजीर आजम ने मोदी से बातचीत के लिए भारत के दौरे पर हैं। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने छत्तीसगढ़, तेलंगाना और विदर्भ में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक उत्तराखंड, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भी कल तक मूसलाधार बारिश होने का इम्कान है। हॉकी में भारत ने आज चीन के मोखी में जनूबी कोरिया को 1-5 से शिकस्त देकर खवातीन जूनियर एशिया कप 2026 के फाइनल में जगह बना ली है। भारत की जानिब से सुप्रिया ने हैट्रिक स्कोर किया। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के पहले दिन नई दिल्ली एलामिया मंजूर किया गया। वजीर आजम ने मोदी आज शाम चीन के सर शी जिनपिंग के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। जनाब मोदी ने मलेशिया, वियतनाम और इथोपिया के अपने हम मनसबों के साथ दो तरफा बातचीत की। उन्होंने अबू जबी के वलीहद के साथ भी बातचीत की। यमन में हौसी बागियों ने बुहैर अहमर की अहम तजारती गुजरगाह पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए कलीदी अहमियत के हामिल जजीरों पर कब्जा कर लिया है। सऊदी अरब ने हौसियों के हमले के बाद कलीदी तेल पाइपलाइन को बंद कर दिया है। भारतीय महकमा मौसमियात ने आज छत्तीसगढ़, तेलंगाना और विदर्भ में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और हॉकी में चीन के मोखी में भारतीय खवातीन टीम जनूबी कोरिया को 1-5 से हराकर जूनियर एशिया कप 2026 के फाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम में भी खिलाड़ी की तरक्की

0: Nongol eten daksa dimba nang daksa ngata stone tu sino. Amo pito konte ngata namna cek ngata tang tu ring ngata shkote nongol. Ngata yang lakspe kesha jese jingnang tsok ring mete nonga kasuk ring no tebe skola.
1: Polak pota gome ka chang chomo su yoko samik le kwa mangpo. Dizak ngai speed goma ning chap ngi favori juk chie tabat pali jung gi ata bishi tu bangi tabat yale. Ngi goma chap tas pa shu ka bat yale pura kaba shu man chomo kato le yana ngi yoste. Te shu gu chap kas pa ngato ga ten pa yang pito ngi ma dara chen chen na yang lip ka bat yale. ते जो माने पत कदर चोग दुख पाले तो चिक ते तीने ठीक चर गया ले ते तो चिको स्केल लायो माचिक ते ते शू कास पाते ने कुले यंग फितो थेन पर जकतं ते ना डामा जकतं चो दे ले बाकी ठीक दुख गया ले ते ने गोभी भूल ना को चांग चोग पला को चांग नाम थेन चमे त्यागले पक्षों चांग चांग नाम थेन चमे त्यागले कुछ टाम ते थमन को थासे थसका थमा थमा थस पा चांग चोग ने त्यागले ता थेन चेस मंगाता टमाटर जया तो ते तो सुन लंग ता मटर जया तो सुन ते ने गोभी जया तो फूल गोभी ते बन गोभी ब्रोकली ते थमा ता सजला परपर थेन को सना वेले ता इजुक चस पा सलन ते दे लुते काजू ता से लुचु को सवा पार बिना ले कुरा सासका आइजु पासपोर्ट सुने लुचुक से दे मोचो से इजुक चो सवाले मुल्ला चुक ना मुल्ला चुक ता दो दमा वेले कुरा हिसाब चुक काजू ते ना जु चुक पाले कुरा लंपक चुक चो चिंगा ता हा घर दिमा ना यो रख पाले तेने फस का छर वेले कसे जो
0: कसा ता ता इ छने मन पे रिस्क को ना ता यार चिक पो ना ता ओले दोन से से फिया मन पाते ने इ गुन ना ता गुने नाम ले फिया देन गिरास कम चीज चितो ज्यादा दमे दो
1: कसे इ पूरा इ थमा दसा ठीक टमियु लोन मा जा तो लोन मा तो तेने माता बाकी सलाद जा तो सुन त्योर यार ला दसा मणि गन बा यांग चप क्यों सा माता काम छु सा खेतो का चप नि माता से जली वेली ता से न ते का लिप का बदले तेने लूस पे खेरता तो पहले ओ तो काम छु सा तेने गुनी पे चप काम छु सो बस गुन ला को माता या तेने बाजार ले ढिमका नि ढिम चुके याले मन माता गो पा पा फूल तो ने गो पा पा ने माने मो पा फूल ले कसे
0: कसे सुके जब सिरिंग मोटु ब्लो ले तेने निरा देम बा रंग सा सोन ले तो पने तेने निरा चल मंग पुरी गा जादर ओ ले तेने सा सोन ना मंग पुरी निरा ता बा जादर पा इन ना तेने निरा यांग पलाक ना ना ता पा चो रिक सो सुन मान पा ओ ले यांग निरा का जुग रि निरा सा सोन ना मा बात के सा दा तो ले
1: पा इन ने टमाटर नंग छो मा देले टमाटर नंग गेला छरु ननी हम माने गेला हम दु ग्याला उस्ते ये ननी का मता ये तरपालिया जो तंपे नाम शनम ये चल मोग चिक तांस बिना ले माने कोने माने जूजू जग ले मान शनम पतंग में माने उते कर माने इसु को उते टमाटर पूरी चोस तांस बिन माने को जमीन दाला चांग इसु सिमिरु पाया ले ते वो मता टमाटर बो चाप सोचिता पिटी ने गया स्पा मंबर तो कुछ ना आता चाप क्यों से ना तेने चार दिन ना छुन छुन छुन ना जमीन आ पक स्कॉल पाले स्कॉल तेना तेना सेक चुप चिक तांगो से गया ले तेने चंग समय लेते ने सिंग तांसा ची तेने शादा में ने चाप प्याज पर काशो मजुआ चंग समय लेता था दंग इस तुक पर चाप लूज ले मिलता
0: टमाटर ने रा ज़्यादा रख पहुँचे टमाटर पीरी चोस तेने यंग जिंग बात पास संकल लंगे स्कूल ले तेने ने का उन लगा तू क्यों समय डॉन ले तेने इस उस लगा खोने का टमाटर गुन तेने गोल ला छा मजुआ तेने इस पूरी ज़रीन सामना तेने ते उनका जुग रे अंगा ता ज़्यादा नो ते वेस कोड़ा ची मोला जाना
1: ये टमाटर पूरी वे ले माने को मेन चीज माने मिल गया ला सो कुछ ना ता चंग छमे सको पर पीटेन चप दो को खनो सोस दो गेले यंग तन खाचिक चुक सु बरपा ते दिने जा खाचिने चा जिगजाम मार्प छेन छेन मा सको सको छकानुन अलग चप चोस वाले देने ते ना जो चोस तेन तेने ते उसको चत चत न छुन छुन चत न पूरा सिटे का तस्ते घंटा चिक निशिक बोआ मिछाले ते तो खोल छु गेले खोप खोल छु तक पे छे ते चिक तंग लेते छे वे चिक छतिक दु पयाले को सको छतिक मिरु तेने इन शरम बारे में खामा शोर छु को समय गेले तेने फुल लोंगसपो तो चियो ना तेने स्टको छ तेने नंग टंग में ना फास्ते बर पाले सखांग बका ना नंग टंग में ने पूरा अंडरग्राउंड नंग सस्त पाले सखांग याले ओ तेने फास बर चियांग का छ ले तेने थोप ना गाता बियर बोतल ओ नक बले गलमा शले बोतल ओ जों बियर ओ तो खां ते गाता जते जुको जु जुक छ नक बले गाता ठंडा बंडा छ नक पाले ते लिमका उनका ओ ते खा ता से टिक खरंग मंच छ तरीका यो नक पाले ओ तो ग्यार वन तो जों ना मध्य पड़े ला दुख सुन बले ओ जो चोर ला फैक्ट्री रंग आता सों बेने ले से बेने देने
0: कसा
1: ओ तो माने स्टॉक में बस जस चमकले इजु बाजार तेने ये सामने ने चीज चपन भगवान जाने तेने माने एकदम रूल दो पले खा पिया चिक बाजार तो जपन ये सुन चप चा चिक खा पिया से बना रूल दो मत ये बस चंग तजम जी चमक पले चप तो मता यूस तजम चो चो इन मानो पले को चप मता होजदम चप चो मता लगो ना खा चप चुक चंग पले ये बाजार ने क्यों कान पैकेट तो ये स्टार्चा ना चोस बने ले जपन चिक चा चिक फिटो तो पाए स्टॉक चल गलो एकदम एकदम स्टॉक चल गले माता माता रा लोकल वा चंग तुक छमे लेले जब क्यों से ना होते खा निम शोर चुको समक तेने नंग टंग में जब खेल चंग छमे दाम ये टंग पंग इस पास टंग में लायो तेले ये गोम पंग पंग फूल पेले तेने माता ये का टंग पे ना ये का

0: अब देखिए दुनिया के कई हिस्सों में जारी संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते तनाव पर ब्रिक्स देशों ने चिंता जताई। ब्रिक्स सम्मेलन के पहले दिन जारी घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने दुनिया में सैन्य खर्च में लगातार हो तेज बढ़ोतरी पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। इसके अलावा नेताओं ने कहा कि वैश्विक समस्याओं का समाधान बहुपक्षीय सहयोग के जरिए होना चाहिए, जिसमें सभी देशों के अलग अलग विचारों और हितों का जो है सम्मान किया जाना चाहिए। इसके अलावा सतत विकास, भूख और गरीबी खत्म करने, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मिलकर काम करने पर भी जोर दिया गया। वहीं पश्चिम एशिया में तनाव पर भी ब्रिक्स देशों ने गहरी चिंता जताई। उन्होंने सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने और ऐसे कदमों से बचने की अपील की जिनसे स्थिति और खराब हो सकती है। वहीं आतंकवाद पर ब्रिक्स देशों ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि आतंकवाद का कोई रूप आपराधी के पूरी तरह अनुचित है। देशों ने पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमलों के भी कड़े शब्दों में निंदा की, जिसमें लगभग 20 लोगों की जान चली गई और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। जी दीपेंद्र
1: जी, धन्यवाद दीपेंद्र। ब्रिक्स के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सदस्य देशों के नेताओं द्वारा इस अवसर पर 2 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए गए। इससे पहले समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करने पर आधारित सत्र के पहले दिन अपने उद्घाटन भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने समूह की संस्थागत नीति गति सुनिश्चित करने के लिए ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखा था। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए एक नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया समूह की अपनी कार्यप्रणाली से शुरू होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग इथियोपिया, मलेशिया और वियतनाम के प्रधानमंत्रियों तथा अबूधाबी के युवराज के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस बीच कजाकिस्तान के राष्ट्रपति और यूरेशियन आर्थिक संघ के अध्यक्ष कासिम जोमार्त तोकायेव ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजुमदार ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को देखते हुए आज रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन और नियंत्रित आवागमन लागू किया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन, विशेषकर मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि जन स्वास्थ्य की रक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। श्री नड्डा ने आज आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सत्य कुमार यादव की मौजूदगी में 10 क्रिटिकल केयर ब्लॉक और 12 एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन सुविधाओं से राज्य में मरीजों की बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिलेगी और बीमारियों के खतरे का समय रहते पता लगाने की क्षमता मजबूत होगी। पाकिस्तान के एक मानवाधिकार संगठन ने अधिकारियों पर बलूचिस्तान में सुनियोजित सैन्यकरण और दमनकारी अभियान चलाने का आरोप लगाया है। संगठन ने कहा कि हिंसा और विस्थापन नागरिकों के दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं। मानवाधिकार संगठन ने बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले में बिगड़ती स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। उसने कहा कि इस क्षेत्र में आजीविका का साधन रहे फलों के बाग अब एक ऐसी नीति के तहत विनाश के कगार पर हैं जो भूमि और आजीविका दोनों के लिए खतरा है। भारत ने महिला जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। भारत की सुप्रिया ने हैट्रिक लगाई जबकि मधु और सुखवीर कौर ने 1-1 गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Valsa Williams. BRICS nations have expressed concern about ongoing conflicts in many parts of the world and the current state of polarization and fragmentation in the international order in the New Delhi Declaration adopted on the first day of the BRICS Summit 2026. The leaders advocated for a multilateral approach that respects diverse national viewpoints and positions on crucial global issues. These issues include sustainable development, eradication of hunger and poverty, and contributing to the global response to climate change. In his closing remarks, the Prime Minister noted that the New Delhi Declaration adopted today provides a clear direction for the shared resolve of the member countries. He added that it is now their shared responsibility to translate these resolutions into tangible results.
3: आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। Representation, responsiveness और rule making तीनों

0: अपना ओरिजिनल डिजिटल कंटेंट अपलोड करें, सभी आवश्यक डिटेल्स भरें और सबमिट पर क्लिक करें, एंड योर एंट्री सबमिटेड सक्सेसफुली। जेम्स ऑफ इंडिया, आपकी जिले की कहानी, पूरे भारत की पहचान।
1: सिक्का सिक्का सिक्का चलेगा पक्का पक्का।
2: सिक्कों की तवील उम्र होने के सबब एक ही कीमत के दर्जे के मुख्तलिफ सिक्के साथ साथ चलन में रहते हैं, इसलिए अफवाहों से बचें और इन्हें बेझिझक लेन देन के लिए इस्तेमाल करें।
3: बैंकों को भी हिदायत है कि ग्राहकों से सिक्के फौरन कबूल करें।
1: सिक्का सिक्का सिक्का चलेगा पक्का पक्का।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बने, चौकन्ने रहे।
4: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
5: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
6: हर जिले की अपनी एक पहचान है, हर परंपरा, हर अनसुनी कहानी, हर छिपी हुई मंजिल भारत का एक अनमोल रत्न है। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की एक राष्ट्रीय पहल जो देश के उभरते डिजिटल क्रिएटर्स और हर जिले की अनूठी पहचान को राष्ट्रीय मंच देती है। शुरुआत 2 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से, अब आपकी कहानी भी पूरे देश तक पहुंच सकती है। गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर पर वेव्स OTT इंस्टॉल करें, खुद को रजिस्टर करें और माई वेव्स सेक्शन के प्रोग्राम्स में जाकर जेम्स ऑफ इंडिया चुनिए, अपना ओरिजिनल कंटेंट अपलोड करिए और अपनी एंट्री सबमिट कर दीजिए। चुनिंदा कहानियों को मिलेगा वेव्स OTT और प्रसार भारती के राष्ट्रीय मंच पर स्थान, क्योंकि भारत की असली पहचान सिर्फ बड़े शहरों में नहीं बल्कि उसके गांवों, कस्बों और जिलों की उन कहानियों में बसती है जिन्हें दुनिया तक पहुँचने का इंतजार है। अगर आपके पास अपने क्षेत्र की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, स्थानीय परंपराओं, प्रेरणादायक व्यक्तित्वों या अनसुनी कहानियों को दुनिया के सामने लाने का जुनून है, तो यही है सही अवसर। आइए अपने जिले की पहचान को एक नई उड़ान दें, और सिर्फ पहचान ही नहीं, आपके हुनर को मिलेगा सम्मान भी। जिला स्तर पर 50,000 रूपए, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर 2 लाख रूपए और राष्ट्रीय स्तर पर 5 लाख रूपए तक के पुरस्कार आपका इंतजार कर रहे हैं। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर क्रिएटर की अपनी कहानी, हर कहानी एक राष्ट्रीय मंच की हकदार।
7: मीडियम वेव कदियो आकाशवाणी कर के लिए नवस्पोफित हो गए तो 17:09 चौवास अंशुक कसता प्रोग्राम यन नजत गांधी कथा प्रोग्राम प्रजुघन पुइन सज्जात अली शुजात।

0: میرین ویب گجو آکاشوانی کرگل ان وقت خبرن نچندو کستا آکاشوانی سری نگر نا اردیان خبرن نا تبصرہ اور ریلی بیت ریلی ولا ڈام پاسے
1: शुमे ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: दुनिया की 21 उबरती हुई और तरक्की पजीर मईशतें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, जनूबी अफ्रीका और मुत्तहिदा अरब इमारात शामिल हैं। इजलास के दौरान ब्रिक्स मेंबर ममालिक के रहनुमा ग्लोबल गवर्नेंस, तिजारत और सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, खुराक और तवानाई की यकीनी फराहमी, हेल्थ केयर, डिजास्टर मैनेजमेंट और हसास सप्लाई चेन जैसे कई अहम मामलों पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। यह इजलास भारत की सदारत में मुनक्द हो रहा है और इसका मौजू है बिल्डिंग फॉर रेजिलेंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। इजलास में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, चीन के सदर शी जिनपिंग, जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामफोसा, मिस्र के सदर अब्दुल फताह एलसीसी, इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो और ईरान के सदर मसूद पेजाशकियान शिरकत कर रहे हैं। इजलास से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 20 वर्षों के दौरान ब्रिक्स ने आलमी सतह पर अपनी शनाख्त बना दी है। उन्होंने मौजूदा इजलास को एक तारीखी संग मील करार दिया। वजीर आजम ने कहा कि भारत की ब्रिक्स की सदारत अवाम दोस्त और इंसानियत पर मबनी है। उन्होंने कहा कि भारत की सदारत के दौरान इस्तकामत, इख्तराइयत, तावुन और देरपाइयत को अवलीन तरजीह दी जा रही है और इन ही तरजीहात को बरोए कार लाते हुए भारत ने ब्रिक्स इश्तराक को बराह रास्त आम इंसान के साथ जोड़ा है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स किसी एक के खिलाफ नहीं है। उन्होंने आलमी गवर्नेंस निजाम को ज्यादा नुमाइंदा और शमूलियाती बनाने की जरूरत पर जोर दिया। नरेंद्र मोदी ने इजलास के दौरान आलमी गवर्नेंस के लिए 10 निकाती रोडमैप की भी तजवीज सामने रखी। ब्रिक्स ममालिक ने इत्तेफाक राय के साथ आज इजलास के पहले रोज न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को मंजूर किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पहले दिन के इजलास के इख्तिताम पर इस डिक्लेरेशन की तजवीज सामने रखी थी। अपने इख्तितामी खुतबे में वजीर आजम ने कहा कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के इख्तियार के जानिब से मेंबर ममालिक के मुश्तरक आजम को एक वाज़ह समत मिल जाएगी। वजीर आजम ने मजीद कहा कि अब ये सब के मुश्तरका जिम्मेदारी है कि इन करारदादों को वाज़े नताइज में तब्दील किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि आलमी लीडरों ने वाज़े कर दिया है कि ग्लोबल साउथ को मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजियां तैयार करने में मसावी शराकत दारी दी जानी चाहिए।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: इजलास के इख्तिताम पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और दीगर ब्रिक्स लीडरों ने भारत मंडप के बाहर वाका बागीचों में कई पौधे लगाए। इससे पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज 18वीं ब्रिक्स इजलास के हाशिए पर कई आलमी रहनुमाओं के साथ दो तरफा बातचीत की। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि इन लीडरों ने दो तरफा शराकत दारी को मुस्तहकम करने से जुड़े उमूर पर सैर हासिल तबादला ख्याल किया। बाकी खबरों से पहले ये वक्फा।
2: लूकन हिज फिकर लूकन हिंदान टीबी मुखालिफ भारत अभियान सासी यजन टीबी बीमारी हिज निशानी ताप सीनस दग थक सित खून यून रोतल अरख मल न रोजन वजन कम गसुन तो बहक तिशी टीबी बीमारी हिज अलामत टीबी छुन ला इलाज के तमाम सरकारी मरकजन पे टीबी बापत टेस्ट ते इलाज बिल्कुल मुफ्त जानकारी प्रयो नजदीकी हेल्थ सेंटर या टीबी मुक्त भारत अभियान एप पे टीबी हारित मुल्क जेने लुक मफातस मजेरी स्टेट ट्यूबरक्लोसिस सेल डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर।
0: पेश है बाकी खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में ईरान के सदर मसूद पेजिशकियां के साथ मुलाकात की। इससे पहले ईरान के सदर ने कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ भी मुलाकात की। इस दौरान मगरबी एशिया में हालिया सूरतहाल से मुतलिक तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम ने भारत के मौकिफ को वाजे करते हुए कहा कि तमाम मामलों को बातचीत और सिफारतकारी के जरिए से हल किया जाना चाहिए। वजीर आजम ने खिते में दायमी अमन व इस्तकाम लाने के लिए मुसलसल कोशिश किए जाने की जरूरत पर जोर दिया। تعلیم اور سماجی بہبود کی وزیر سکینہ اتو نے کہا ہے کہ عمر

0: अब्दुल्ला की सरबराही वाली सरकार यूटी के नौजवानों को तालीम और खेल कूद के शोबों में बेहतर मौके फराहम करने के लिए तमाम इकदाम कर रही है। इन बातों का इजहार उन्होंने आज डीएचपोरा के निहामा इलाके में 1 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए जाने वाले वॉलीबॉल एकेडमी के संग बुनियाद रखने के बाद वहां खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि बुनियादी सतह पर खेलकूद के ढांचे को मजीद बेहतर बनाने से नौजवानों को अपनी सलाहियत का मुजाहरा करने में मदद मिलेगी। दरियास्ता मौसूफा ने एहतजाज कर रहे एनएचएम मुलाजमीन पर जोर दिया कि वो अपनी हड़ताल खत्म करके ड्यूटी पर हाजिर हो जाएं ताकि लोगों को किसी किस्म की मुश्किल का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि हुकूमत उनके मसाइल को हल करने की तरफ खुसूसी तवज्जो दे रही है।
1: मैंने कहा है जो आपके मुश्किलात है हम उनको एग्जामिन करेंगे और जो हमारे हाथ में है वो हम करेंगे, जो हमारे हाथ में नहीं है उसको ऑलरेडी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा है आपका प्रपोजल। और मैं जब खुद दिल्ली गई थी ऑनरेबल यूनियन हेल्थ मिनिस्टर वहां पे थे उस कॉन्फ्रेंस में, मैंने सबसे अगर कोई पॉइंट उठाया डिस्कस किया है वो इन एनएचएम जो मुलाजिम है उनके बारे में मैंने कहा उनको कि उनका जो ऑनरेरियम मिलता है वो बहुत कम है, आजकल महंगाई बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने एक्सेप्ट भी करा है और हमारा प्रपोजल भी उसके लिए गया है। मैं उस प्रपोजल के लिए एक बार फिर मैंने इनको कहा है कि मैं एक रिमाइंडर जो है वो वहां पे दिल्ली में उनको दे दूंगी ताकि वो इनकी किसी तरह मदद कर सके। यहाँ हमारी गवर्नमेंट जो है हम उसको एग्जामिन कर रहे हैं, तो फिर अगर इस तरह प्रोटेस्ट पे जाएंगे तो मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं होगा।
0: देही तरक्की और पंचायती राज के वजीर जावेद अहमद डार ने आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हदीपोरा रफियाबाद में एक फैशन डिजाइनिंग सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस सेंटर से मकामी नौजवानों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग और रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। उन्होंने तालीमी इदारों पर जोर दिया कि वह तदरीसी सरगर्मियों के साथ साथ नौजवानों के हुनरों में भी इजाफा करें ताकि वह आगे जाकर खुद रोजगार कमा सकें। जल शक्ति के वजीर जावेद अहमद राणा ने कहा है कि बुनियादी ढांचे को मजीद बेहतर बनाना और आवाम तक जरूरी खिदमात पहुंचाना उमर अब्दुल्ला सरकार की तरजीहात में शामिल है। इन बातों का इजहार वजीर ने आज पुंछ के जनावाली गली में 45 लाख रुपए की लागत वाले नए तामीर शुदा रेस्ट हाउस के इफ्तिताह और वहां 1,85,58,000 रुपए की लागत से तैयार किए जाने वाले जामे वाटर सप्लाई ऑगमेंटेशन स्कीम के संग बुनियाद रखने के मौके पर किया। बाद हजां उन्होंने पीएमजीएसवाई के तहत वहां सड़क के एक प्रोजेक्ट का भी संग बुनियाद रखा। दरियासला वजीर ने मेंढर के बाटा दूरिया इलाके में मुनदा एक अवामी राबता प्रोग्राम के दौरान अवाम को दरपेश मसाइल सुने और उन्हें यकीन दिलाए कि उनके तमाम जायज मुतालबात को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा। जम्मू कश्मीर असेंबली के मौसम खजां के इजलास के आसन इनेकाद के लिए तैयारियों और इंतजाम को हतमी शक्ल दी जा रही है। इस सिलसिले में कानून साज असेंबली के स्पीकर अब्दुलरहीम राथर ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अरकान भी नामजद किए हैं। इनमें असेंबली में हिजब इख्तलाफ के लीडर सुनील शर्मा, अरकान असेंबली अली मोहम्मद सागर, मुबारक गुल, मोहम्मद यूसुफ तारीगामी, गुलाम अहमद मीर, सजाद गनी लोन, मोहम्मद फयाज और चौधरी मोहम्मद अकरम शामिल हैं। जैसा कि पहले ही खबर दी जा चुकी है कि 21 सितम्बर से शुरू होने वाले इस इजलास की कार्रवाई मुकम्मल तौर से बगैर कागज नेशनल

जय हिंद। फिल्मी गीतों पर मबनी प्रोग्राम फौजी भाइयों के लिए लेकर हम हाजिर खिदमत है। प्रोग्राम सुनने वाले तमाम फौजी भाइयों और दोस्तों की खिदमत में हमारा मोहब्बत भरा सलाम। तो लीजिए दोस्तों, प्रोग्राम के आगाज में समाप्त कीजिए ये गीत।

ध्यान किसका है, जरा बताओ तो ये इम्तिहान किसका है। हमें भुला दो मगर ये तो याद ही होगा, हमें भुला दो मगर ये

0: दोस्तों प्रोग्राम अभी जारी है, पहले ये छोटा सा वक्फा।
1: पापा ये सब?
2: हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए।
1: ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी।
3: अरे ये कैसे रह गया?
1: पैसे गए?
3: नहीं नहीं नहीं, उपाय है उपाय है।
4: बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है।
5: ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें।
6: दादू ये
7: RBI कहता है
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: सही कह रहा है।
9: पेमेंट फेल,
10: पेमेंट फेल, लेकिन पैसे तो कट गए।
9: गई मेरी मेहनत की कमाई।
11: हो जाएगी भरपाई, फिक्र मत करे मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाए तो बैंक वक्त से पैसे लौटाएगा, वरना कॉम्पेंसेशन की फराहमी, नहीं तो RBI के ओम्बडसमैन से शिकायत करें आप।
12: या बिल,
11: मेरी फीस। RBI कहता है
8: जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए।
11: हैप्पी बर्थडे माय डियर।
13: दादू।
11: अरे ये क्या, आपसे लोन?
13: मेरी नई स्कूटी के लिए।
11: अरे भरोसा यानी, नहीं तो पैसों पर फिर जाएगा पानी।
13: मतलब?
11: सुनो, ऑनलाइन लेंडिंग एप्स को जांच परख कर RBI से मंजूर शुदा बैंक NBFC से ही आप लोन लीजिए। गैर मंजूर शुदा एप्स या अनजान लोगों से जाती मालूमात शेयर करना यानी धोखा।
13: दादू बन गई से यानी।
11: गिफ्ट नहीं खोलेंगे आप?
13: स्कूटी।
11: RBI कहता है इनसे सुनिए आप।
13: जानकार बने,
8: चौकन्ने रहें।
0: वक्फे के बाद दोबारा प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है।

आप समाप्त कर रहे थे हरिहराम और कविता कृष्णमूर्ति को, फिल्म थे बॉम्बे। इस गीत को कलमबंद किया था महबूब ने और संगीत दिया था AR रहमान ने। प्रोग्राम की अगली पेशकश में आइए समाप्त करते हैं अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण को, फिल्म का नाम है चाहत। गीतकार है जमीर काजमी और संगीतकार श्याम सुरिंदर। यहां पर एक और खूबसूरत सी गजल, कितना मुश्किल है अजियत ये गवारा करना, कितना मुश्किल है अजियत ये गवारा करना, दिल से उतरे हुए लोगों में गुजारा करना, जिंदगी हम पे ये आसान भी हो सकती थी, जिंदगी हम पे ये आसान भी हो सकती थी, सीख लेते जो किसी दर्द का चारा करना। कहाँ जाते हो अभी साथ गुजारो कुछ दिन, कहाँ जाते हो अभी साथ गुजारो कुछ दिन, हम पे मुश्किल कोई आए तो किनारा करना। कितना मुश्किल है जलाना किसी रास्ते में चिराग, कितना मुश्किल है जलाना किसी रास्ते में चिराग, कितना आसान है हवाओं को इशारा करना, कितना आसान है हवाओं को इशारा करना, जिंदगी हम तो चलो मान गए सह भी गए, जिंदगी हम तो चलो मान गए सह भी गए, ऐसा बर्ताव न किसी से न दोबारा करना, ऐसा बर्ताव न किसी से न दोबारा करना।

दोस्तों, ये नगमे आप आकाशवाणी करगिल से फौजी भाई प्रोग्राम के तहत अपने मेजबान नवाज अली रेहान के साथ सुन रहे हैं। आप क्यों साहिब असरार समझते हैं मुझे, घर के अफराद तो बेकार समझते हैं मुझे। आपको मैंने कभी गौर से देखा भी नहीं, आप भी अपना तलबगार समझते हैं मुझे। मेरे किरदार की जो कस्में उठाते थे कभी, अब वही लोग गुनाहगार समझते हैं मुझे। आप तो वक्त गुजारी को मुझे मिलते हैं, आप तो शाम का अखबार समझते हैं मुझे। जब भी मुश्किल में हूँ, अहबाब तो आ जाते हैं, किसी दरवेश का दरबार समझते हैं मुझे। अहले दानिश की नज़र में हूँ मैं कम फहम, मगर सारे कम फहम समझदार समझते हैं मुझे। जिनकी तलकीन पे मैं गम में हंसा करता हूँ, जाने क्यों अब वो अदाकार समझते हैं मुझे। मैं कहानी का हूँ एक सानवी किरदार नवीत, मैं कहानी का हूँ एक सानवी किरदार नवीत, और वो मरकजी किरदार समझते हैं मुझे, और वो मरकजी किरदार समझते हैं मुझे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया, बहुपक्षवाद को मजबूत करने और व्यापक सहयोग के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि की। घोषणा पत्र में सदस्य देशों के बीच गहन आर्थिक और विकासात्मक सहयोग का आह्वान। पश्चिम एशिया सहित सभी विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए संवाद और कूटनीतिक प्रयासों का आग्रह। भारत ने कहा, घोषणा पत्र को अपनाया जाना भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, निर्णयों और परिणामों के बीच अंतर को साझेदारी और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से पाटना होगा। कहा, ब्रिक्स सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने द्विपक्षीय बैठक में रणनीतिक और दीर्घकालिक संबंधों पर बल दिया। कहा, मतभेदों का को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने रेड कॉर्नर नोटिस के अंतर्गत वांछित अमृतपाल सिंह को मोल्दोवा से भारत प्रत्यर्पित कराया और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में आज रात मौजूदा चैंपियन आरिना सबालिंका का सामना एलिना रिबाकिना से। और अब समाचार विस्तार से। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में इस घोषणा पत्र को अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार, प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम निर्माण की प्रक्रिया में सुधार आवश्यक हैं। श्री मोदी ने कहा कि निर्णयों और उनके परिणामों के बीच के अंतर को साझेदारी और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से पाटना होगा। ब्रिक्स के ग्लोबल वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सदस्य देशों के नेताओं ने दो स्मारक डाक टिकट भी जारी किए। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यान्वयन तंत्र तीन पक्षों के समूह ट्रोइका के माध्यम से सभी पहलों और उनके परिणामों की निगरानी करेगा।
1: गवर्नेंस का वर्तमान स्ट्रक्चर एक पिरामिड जैसा दिखाई देता है। हमें इस पिरामिड ऑफ प्रिविलेज को प्लेटफॉर्म ऑफ पार्टनरशिप में

0: बदलना है, जहां हर देश की आवाज हो, हर सदस्य का स्टेक हो, हर प्रयास के केंद्र में मानवता का विकास हो। इस उद्देश्य से मैं प्रस्ताव रखता हूं कि हम मिलकर ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म के 10 प्रपोजल्स तैयार करें।
1: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपनी कार्यप्रणाली में सुधार से करनी होगी।
0: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
1: प्रधानमंत्री ने समुद्री अधिकारियों और संबंधित देशों के राजनयिक मिशनों को जोड़ने के लिए आपात स्थिति में नाविक सहायता नेटवर्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखा।
0: क्या हम सी फेरर इमरजेंसी सपोर्ट नेटवर्क बना सकते हैं? इसके माध्यम से संबंधित देशों की मैरिटाइम अथॉरिटी और मिशंस को जोड़ा जाएगा। इससे डिस्ट्रेस अलर्ट, मेडिकल असिस्टेंस, परिवारों को सूचना तथा इवैक्यूएशन में सहयोग दिया जा सकता है।
1: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच की एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदलने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स किसी देश के विरुद्ध नहीं है, बल्कि सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं।
0: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता पीपल सेंट्रिक और ह्यूमैनिटी फर्स्ट अप्रोच पर आधारित है। रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी हमारी प्राथमिकताएं रही हैं। इन प्राथमिकताओं के साथ हमने ब्रिक्स सहयोग को सामान्य जन से जोड़ने का विशेष बल दिया है।
1: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकताओं पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इसे और नहीं टाला जा सकता। प्रधानमंत्री ने बताया कि वैश्विक आर्थिक विकास को गति देने वाले देशों को वैश्विक आर्थिक शासन में भी उचित भूमिका निभानी चाहिए।
0: रिप्रेजेंटेशन के संबंध में मैं कहना चाहूंगा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म अब और टाला नहीं जा सकता। पर टैक्स बेस्ड नेगोशिएशन को निश्चित समय सीमा और स्पष्ट परिणाम से जोड़ना होगा। उसी तरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वोटिंग पावर, लीडरशिप पोजीशन और पॉलिसी प्रायोरिटी आज की इकोनॉमिक रियलिटीज के अनुसार होनी चाहिए।
1: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमति भारत की विभिन्न स्तरों पर वर्षों से चले सहयोग के परिणाम स्वरूप संभव हुई है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज विदेश मंत्रालय के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाना भारत की अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक था। उन्होंने कहा कि आज के सत्र में ब्रिक्स नेताओं ने अपने अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बात की, लेकिन बहुपक्षवाद को मजबूत करने और वैश्विक शासन संस्थानों को अधिक प्रतिनिधि, समावेशी, प्रभावी और आज की वास्तविकताओं के प्रति उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता पर व्यापक सहमति थी।
2: मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि आप नई दिल्ली घोषणा पत्र को देखें तो ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की स्पष्ट रूप से निंदा की है। ब्रिक्स नेताओं ने पिछले साल जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की भी कड़े शब्दों में निंदा की है।
3: जम्मू एंड कश्मीर दैट टुक प्लेस लास्ट ईयर।
1: ब्रिक्स देशों ने विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बढ़ते ध्रुवीकरण तथा गुटबाजी पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक सैन्य खर्च में लगातार वृद्धि पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सदस्य देशों ने बहुपक्षीय दृष्टिकोण का आह्वान किया, जो सतत विकास, भूख और गरीबी का उन्मूलन तथा जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर सभी देशों के दृष्टिकोण का सम्मान करता हो।
4: ब्रिक्स सम्मेलन के पहले दिन जारी घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता जताई। उन्होंने सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने और ऐसे कदमों से बचने की अपील की जिनसे स्थिति और खराब हो सकती है। ब्रिक्स नेताओं ने कहा कि आम नागरिकों की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके अलावा बातचीत और कूटनीति के जरिए शांति, सुरक्षा और स्थिरता

0: का रास्ता तलाशने की अपील की। ब्रिक्स नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रासंगिक प्रस्तावों को लागू करने का भी आह्वान किया। उन्होंने सभी पक्षों से गाजा पट्टी में युद्ध विराम और मानवीय सहायता की पूर्ण तथा निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने की अपील की। ब्रिक्स नेताओं ने दोहराया कि इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का समाधान केवल बातचीत से ही संभव है। आतंकवाद पर ब्रिक्स देशों ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि आतंकवाद का कोई भी रूप पूरी तरह अनुचित है। ब्रिक्स देशों ने पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से अपनाया गया। सुपर्णा सैकिया के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आज पुष्टि की कि भारत और चीन को अपने संबंधों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष अगस्त में तियानचिन बैठक के बाद भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों में निरंतर प्रगति का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। इससे पहले दिन में प्रधानमंत्री मोदी ने शिखर सम्मेलन के दौरान इथियोपिया, मलेशिया और वियतनाम के प्रधानमंत्रियों तथा अबू धाबी के युवराज के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने सबसे पहले इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉ आबी अहमद अली के साथ वार्ता की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से चर्चा की। इसके बाद श्री मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ वार्ता की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा तथा दोनों देशों के लोगों के संबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों पर सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठक में श्री मोदी ने भागीदार देश के रूप में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वियतनाम का स्वागत किया और प्रधानमंत्री ने अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ भी वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी के महत्व को दोहराया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिगेस पारिल्ला से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच दक्षिण सहयोग पर सार्थक बातचीत हुई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज रेड कॉर्नर नोटिस के अंतर्गत गिरफ्तार अमृतपाल सिंह उर्फ कुरपाल सिंह को मोल्दोवा से भारत प्रत्यर्पित कराने में सफलता हासिल की। वांछित भगोड़े को विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और पंजाब पुलिस के समन्वय से वापस लाया गया है। सीबीआई ने बताया कि अमृतपाल पंजाब में दर्ज कई गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने गुजरात में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और कच्छ में भारी बारिश होने का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी कल बारिश हो सकती है। विभाग ने कहा कि बिहार, झारखंड और अंडमान व निकोबार में गरज के साथ बौछारें गिर सकती हैं। दिल्ली में अगले 5 दिनों तक कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। इस बीच केरलम

0: और माहे में कल गर्म और उमस भरा मौसम रहने के आसार हैं। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स का फाइनल आज रात एलिना रायबाकिना और आर्यना सबालिंका के बीच खेला जाएगा। सेमीफाइनल में एलिना ने कोको गॉफ को और आर्यना ने जेसिका पेगुला को हराया था। पुरुष सिंगल्स का फाइनल बेन शेल्टन और अलेक्जेंडर ज्वेरेव के बीच खेला जाएगा। सेमीफाइनल में बेन शेल्टन ने फ्रांसिस टियाफो को और अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने करेन खचनोव को पराजित किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। बहुपक्षवाद को मजबूत करने और व्यापक सहयोग के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि की। घोषणा पत्र में सदस्य देशों के बीच गहन आर्थिक और विकासात्मक सहयोग का आह्वान। पश्चिम एशिया सहित सभी विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए संवाद और कूटनीतिक प्रयासों का आग्रह। भारत ने कहा, घोषणा पत्र को अपनाया जाना भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, निर्णयों और परिणामों के बीच अंतर को साझेदारी और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से पाटना होगा। कहा, ब्रिक्स सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने द्विपक्षीय बैठक में रणनीतिक और दीर्घकालिक संबंधों पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में आज रात मौजूदा चैंपियन आर्यना सबालिंका का सामना एलिना रायबाकिना से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. BRICS nations adopt New Delhi Declaration 2026, reaffirming commitment to stronger multilateralism and deeper cooperation. Declaration calls for economic and developmental cooperation among member states, urges dialogue and diplomacy to resolve disputes, particularly in West Asia. New Delhi says adoption of the declaration among defining outcomes of India's BRICS chairship. Prime Minister Narendra Modi says gap between decisions and outcomes must be bridged through partnership and collective action. Emphasizes BRICS moving forward with approach of taking everyone along. Prime Minister Modi and President of China Xi Jinping stress for strategic and long-term perspective of ties in their bilateral meeting, assert differences should not become disputes. Mr. Modi holds series of bilateral meetings with his counterparts from BRICS countries. CBI secures extradition of red notice fugitive Amritpal Singh from Moldova, and in US Open, defending champion Arina Sabalenka to take on Elena Rybakina in women's singles title clash tonight. The BRICS nations adopted the New Delhi Declaration on the first day of the summit at Bharat Mandapam in New Delhi today. The declaration calls for commitment to stronger multilateralism and deeper cooperation, stresses on deeper economic and developmental cooperation, and advocates international order for developing countries to have greater influence in decision-making on global issues. The BRICS leaders expressed concern over ongoing conflicts in many parts of the world and the current state of polarization and fragmentation in the international order. The grouping also stressed cooperation on sustainable development. It highlighted the need to tackle hunger and poverty and strengthen the global response to climate change. Prime Minister Narendra Modi said in his closing remarks after adoption of the New Delhi Declaration that it provides a clear direction for the shared resolve of the member countries. He added that it is now their shared responsibility to translate these resolutions into tangible results.
2: आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। रिप्रेजेंटेशन, रिस्पॉन्सिवनेस और रूल मेकिंग तीनों में सुधार आवश्यक है। आज एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा देता है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदले।
1: Here is more from our correspondent.
3: BRICS member countries expressed deep concern over continued escalation of tensions in West Asia and called for exercising maximum res-

0: says gap between decisions and outcomes must be bridged through partnership and collective action, emphasizes BRICS moving forward with approach of taking everyone along. Prime Minister Modi and President of China Xi Jinping stress for strategic and long-term perspective of ties in their bilateral meeting, assert differences should not become disputes. Mr. Modi holds series of bilateral meetings with his counterparts from BRICS countries. CBI secures extradition of red notice fugitive Amritpal Singh from Moldova, and in US Open, defending champion Arina Sabalenka to take on Elena Rybakina in women's singles title clash tonight. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। ब्रिक्स मुल्कों ने ज्यादा मजबूत कसीर रुखी निजाम और इश्तराक बढ़ाने के अपने अहद का इरादा करते हुए नई दिल्ली एलामिया 2026 मंजूर किया है। इसमें मेंबर मुल्कों के माबेन और ज्यादा इकतसादी और तरक्याती इश्तराक के लिए कहा गया है। तनाज़ात खासतौर पर मगरबी एशिया के तनाज़े के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर दिया गया है। भारत ने कहा है कि नई दिल्ली एलामिये का मंजूर होना भारत की ब्रिक्स सदारत के अहम नतायज में से एक है। वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि फैसलों और नतीजों के दरमियान फर्क को साझेदारी और इज्तिमाई इकदाम के जरिए दूर किया जाना चाहिए। वज़ीरे आज़म ने इस बात को उजागर किया कि ब्रिक्स हरेक को साथ लेकर चलने की हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ रहा है। वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी और चीन के सदर शी जिनफिंग ने अपनी दो तरफा बातचीत में ताल्लुकात के कलीदी और तवील मुद्दती नुक्ते नजर पर जोर दिया। जनाब मोदी ने ब्रिक्स मुल्कों के वज़ीरे आज़म के साथ दो तरफा बातचीत की। सीबीआई रेड कॉर्नर नोटिस के तहत मफरूर मुलजिम अमृतपाल सिंह को मोल्डोवा से भारत ले आई है और यूएस ओपन टेनिस में आज रात खवातीन सिंगल्स के फाइनल में पिछली बार की चैंपियन अरियाना सबलेंका और एलिना रविकीना आमने सामने होंगी। अब खबरें तफसील से। ब्रिक्स मुल्कों ने ज्यादा मजबूत कसीर रुखी निजाम और इश्तराक बढ़ाने के अपने अहद का इरादा करते हुए नई दिल्ली एलामिया 2026 मंजूर किया है। इसमें मेंबर मुल्कों के माबेन और ज्यादा इकतसादी और तरक्याती इश्तराक के लिए कहा गया है। इसमें तनाज़ात खासतौर पर मगरबी एशिया के तनाज़े के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर दिया गया है। ब्रिक्स मुल्कों ने दुनिया के कई हिस्सों में जारी महाजाराई और लड़ाई नेज़ बैनुल-अक़वामी निज़ाम में बिखराव और इख्तलाफात की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। ब्रिक्स सरबराह मीटिंग 2026 के पहले दिन मंजूर किए गए नई दिल्ली एलामिये में रहनुमाओं ने एक ऐसा कसीर रुखी रवैया अख्तियार किए जाने की हिमायत की जिसमें अहम आलमी उमूर पर मुख्तलिफ मुल्कों के अलग अलग नुक्ते नजर और मौकिफ का एहतराम किया जाए। इनमें पायदार तरक्की, भुखमरी और गुर्बत का खात्मा और आबो हवा की तब्दीली के ताल्लुक से आलमी सतह पर इकदामात के मामले शामिल हैं। वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज के तबादले ख्याल से यह बात नुमाया हो गई है कि फरसूदा इदारे बदलती हुई दुनिया का निज़ाम नहीं चला सकते, और साथ ही उन्होंने इस बात को उजागर किया कि नुमाइंदगी इकदामात करने और ज़ाबते मुरत्तब करने में इस्लाहात लाजमी हैं। जनाब मोदी ने कहा कि रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया है कि मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजियां तैयार करने और इनसे वाबस्ता ज़ाबते मुरत्तब करने में ग्लोबल साउथ की मसावियाना शमूलियत होनी चाहिए। वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज जो नई दिल्ली एलामिया मंजूर किया गया है उसमें मेंबर मुल्कों के मुश्तरका अज़्म के लिए वाज़ह सिमत तय की गई है। जनाब मोदी ने कहा कि इन वादों और अहद को हकीकी नतीजों में बदलना अब मुल्कों की मुश्तरका जिम्मेदारी है।
2: आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। रिप्रेजेंटेशन, रिस्पॉन्सिवनेस और रूल मेकिंग, तीनों में सुधार आवश्यक है। आज एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा देता है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदले।
1: ब्रिक्स रहनुमाओं ने जम्मू और कश्मीर में पिछले साल 22 अप्रैल के दहशतगर्दाना हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और हर तरह की दहशतगर्दी से

0: निमटने के अहद को दोहराया। इससे पहले आज सपहर नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स सरबराह मीटिंग 2026 का आगाज हुआ। वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर अपने खिताब में तसलसल और अमल दरामद से मुतालिक ब्रिक्स तरीक़े कार तजवीज़ किया, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर साल ब्रिक्स की सदारत किसी दूसरे मुल्क के हाथ में आने के बावजूद ग्रुप की इदाराजाती रफ्तार बरकरार रहे। वज़ीरे आज़म ने कहा कि इस तरीक़े कार की बदौलत ट्रायोका के जरिए सभी इकदामात पर आगे की कार्रवाई और नतीजों को बरकरार रखने में मदद मिलेगी। वज़ीरे आज़म ने कहा कि ब्रिक्स मुल्कों को अगले 20 साल के लिए एक नए और बड़े एजेंडे पर काम करना होगा। जनाब मोदी ने मल्लाहों के लिए इमरजेंसी इमदादी नेटवर्क कायम करने की तजवीज़ भी पेश की, ताकि मुश्किल की घड़ी में इमदाद में सहूलत की खातिर बहरी हुक्काम और मुतअल्लिका मुल्कों के सफारती मिशनों को बाहम मुंसलिक किया जा सके।
1: क्या हम सी फेरर इमरजेंसी सपोर्ट नेटवर्क बना सकते हैं? इसके माध्यम से संबंधित देशों की मैरिटाइम अथॉरिटी और मिशंस को जोड़ा जाएगा। इससे डिस्ट्रेस अलर्ट्स, मेडिकल असिस्टेंस, परिवारों को सूचना तथा इवैक्यूएशन में सहयोग दिया जा सकता है।
0: वज़ीरे आज़म मोदी ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि ब्रिक्स मुल्कों के माबेन इत्तेहाद और इत्तेफाक राय को आलमी मंजरनामे पर ठोस नतीजों की शक्ल दी जाए। जनाब मोदी ने कहा कि भारत की सदारत में मजबूती, इख्तिरा, तआवुन और पायदार तरक्की भारत की अवलीन तरजीहात रही हैं। इन तरजीहात से रहनुमाई हासिल करते हुए भारत ने ब्रिक्स इश्तराक को सीधे आम आदमी के साथ जोड़ने पर खास जोर दिया है। वज़ीरे आज़म ने कहा कि आलमी सतह पर बहरान के मामले में तो ग्लोबल साउथ पेश पेश है, लेकिन फैसला साजी के एतबार से सबसे पीछे है। अक़वाम मुत्तहदा सलामती कौंसिल में इस्लाहात के मामले पर वज़ीरे आज़म ने जोर देकर कहा कि अब इसे और मौखर नहीं किया जा सकता।
1: यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म अब और टाला नहीं जा सकता। टैक्स बेस्ड नेगोशिएशंस को निश्चित समय सीमा और स्पष्ट परिणाम से जोड़ना होगा। उसी तरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वोटिंग पावर, लीडरशिप पोजीशन और पॉलिसी प्रायोरिटी आज की इकोनॉमिक रियलिटीज के अनुसार होनी चाहिए।
0: वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी और चीन के सदर शी जिनपिंग ने यह बात दोहराई है कि भारत और चीन को अपने ताल्लुकात के सिलसिले में एक कलीदी और तवील मुद्दती नुक्ते नजर अपनाना चाहिए और इख्तलाफात को तनाजे की शक्ल इख्तियार नहीं करनी चाहिए। आज नई दिल्ली में ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के मौके पर अपनी दोतरफा बातचीत के दौरान दोनों रहनुमाओं ने पिछले साल अगस्त में तियानजिन की अपनी गुज़श्ता मुलाकात के बाद से भारत चीन बाहमी ताल्लुकात में लगातार पेशरफ्त होने का खैर मकदम किया। वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने इस बात को उजागर किया कि दोनों फरीकों को तीन बाहमी अवामिल से रहनुमाई हासिल करनी चाहिए। इनमें बाहमी एहतराम, बाहमी मफाद और बाहमी एहसास शामिल हैं। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि सरहदी इलाकों में अमनो इस्तेहकाम बाहमी ताल्लुकात के मुसलसल फरोग के लिए जरूरी बुनियाद है। इससे पहले दिन में वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के मौके पर इथियोपिया, मलेशिया और वियतनाम के वज़राए आज़म के साथ साथ अबूज़हबी के वलीअहद शहजादे के साथ दो तरफा बातचीत की। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ब्रिक्स रुकन ममालिक ने मगरबी एशिया में जारी बढ़ती कशीदगी पर तश्वीश का इजहार किया और ज्यादा से ज्यादा तहम्मुल बरतने के साथ साथ ऐसी कार्रवाइयों से गुरेज करने पर जोर दिया जिससे सूरत हाल में मजीद कशीदगी पैदा हो। उन्होंने अक़वामे मुत्तहिदा के चार्टर के मकासद और उसूलों के मुताबिक शहरियों और शहरी बुनियादी ढांचे के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने पर जोर दिया। ममालिक ने बातचीत और सिफारतकारी के जरिए कोशिशों में इजाफे की हौसला अफजाई की ताकि खत्ते में देरपा अमन, सलामती और इस्तेहकाम के सिलसिले में तवील मुद्दती आपसी समझबूझ पैदा हो सके। ब्रिक्स रुकन ममालिक ने बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के मुकम्मल तहफ्फुज़ात के तहत शहरी बुनियादी ढांचे और पुरम न्यूक्लियाई सहूलतों पर जानबूझकर किए गए हमलों पर भी गहरी तश्वीश जाहिर की। उन्होंने गुज़श्ता बरस 22 अप्रैल को दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की कि जो जम्मू कश्मीर में किया गया था। ब्रिक्स रुकन ममालिक ने सरहद पार दहशतगर्दों की नकलो हरकत, दहशतगर्दी की माली एयानत और उसके लिए महफूज पनाहगाहों समेत हर तरह की दहशतगर्दी से निमटने के अज़्म का भी एयादा किया। नई दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: वजारत खारजा ने आज कहा है कि भारत की ब्रिक्स की सदारत के दौरान मुख्तलिफ सतहों पर ایک سال طویل رابطوں کے سبب برکس سربراہ میٹنگ میں نئی دلی اعلانیہ پر اتفاق رائے ہو پائے

है। आज शाम नई दिल्ली के भारत मंडपम में मीडिया से बातचीत करते हुए इक्तिसादी ताल्लुकात शोबे के सेक्रेटरी सुधाकर दलेला ने कहा कि नई दिल्ली ऐलानियों को इख्तियार किया जाना भारत की सदारत के अहम नतायज में से एक है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत की सदर नशीनी लोगों पर मरकूज रही है। जनाब दलेला ने भारत की सदारत के दौरान अपने तआवुन के लिए ब्रिक्स ममालिक का शुक्रिया अदा किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में मलेशिया के सरमायाकारी तजारत और सनत के वजीर दातुक सेरी जोहारी अब्दुल गनी के साथ दोतरफा मीटिंग की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब गोयल ने कहा कि मीटिंग के दौरान तरफैन ने भारत मलेशिया इक्तिसादी शराकतदारी का जायजा लिया और बाहमी तजारत और सरमायाकारी को फरोग देने, बाजार तक रसाई को बेहतर बनाने और सप्लाई चेन राबितों को मुस्तहकम करने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि भारत बाहमी तौर पर और भारत आसियान तरीक़ेकार के तहत तजारत और इक्तिसादी ताल्लुकात के तमाम तर इम्कान की खातिर मलेशिया के साथ करीबी तौर पर इश्तराक के लिए मुसलसल पुरअज़्म है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आज भारत आसियान बुनियादी ढांचे, सरमायाकारी, बैंक, AIIB शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने के इम्कान पर तबादला ख्याल किया। वजीर खजाना ने नई दिल्ली में AIIB की सदर जू जीआई से मुलाकात की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर वजारत खजाना ने कहा कि भारत में बुनियादी ढांचे और ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी की तरजीहात में मदद फराहम करने, मकामी करेंसी में माली मदद में इजाफे, निजी शोबे की शराकतदारी को बढ़ाने और AIIB की आलमी मौजूदगी के सिलसिले में तबादला ख्याल किया गया। मरकजी जांच ब्यूरो CBI ने रेड कॉर्नर नोटिस पर अमृतपाल सिंह उर्फ गुरपाल सिंह को मलडोवा से भारत लाने में कामयाबी हासिल कर ली है। वजारत खारजा, वजारत दाखिला और पंजाब पुलिस के साथ तालमेल कायम करके CBI इस मतलूबा मफरूर मुलजिम को भारत लाई है। पंजाब पुलिस की चार एहलकारों की एक टीम को मफरूर मुलजिम को वापस लाने के लिए मलडोवा भेजा गया था। तहकीकाती एजेंसी ने कहा है कि पंजाब में रजिस्टर्ड संगीन नौयत के कई फौजदारी केसों में उसकी तलाश थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यहूदियों के नए साल रोश हशनाह के मौके पर इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू, इसराइल के अवाम और दुनिया भर में यहूदी बिरादरी को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने उम्मीद जाहिर की है कि यह नया साल हरेक के लिए अमन, तंदुरुस्ती और तरक्की लेकर आएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि गैर मुल्की करेंसी से मुतल्लिक नॉन रेजिडेंट बैंक और दिगर स्कीमों के जरिए आने वाली रकूमात में काफी इजाफा हुआ है। एक प्राइवेट टेलीविजन चैनल के साथ इंटरव्यू में RBI के गवर्नर ने कहा कि बड़ी रकूमात की आमद से भारत के मैक्रो इकतसादी बुनियादी अवामिल में एतमाद की अक्कासी होती है और मुख्तसर मुद्दत के अंदर गैर मुल्की सरमाया को रागिब करने की सलाहियत का इजहार भी होता है। बैंकारी निजाम में इजाफी नकद रकम की दस्तियाबी के बारे में जनाब मल्होत्रा ने कहा कि नकद रकम के बंदोबस्त के लिए रिजर्व बैंक के पास मुनासिब तरीक़ेकार हैं और वो जरूरत के लिहाज से इनका इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। कौमी जांच एजेंसी NIA ने आज जम्मू कश्मीर में 10 मकामात पर तलाशी की कार्रवाई अंजाम दी। इनमें कुपवाड़ा, कुलगाम, बांदीपुरा, बारामूला और सुपोर शामिल हैं। तलाशी की यह कार्रवाई सरहद पार दहशतगर्दी की एक साजिश के सिलसिले में की गई है, जिसमें दहशतगर्द तंजीम लश्करे तैयबा के पाकिस्तान से काम करने वाले आका और मकामी कारिंदों के मुबैना नेटवर्क के मुलविस होने की बात कही गई है। तलाशी की कार्रवाई के दौरान इसके से व्यवस्था काबिल एतराज मवाद जब्त किया गया, जिसकी जांच की जा रही है। US ओपन टेनिस में आज रात खवातीन सिंगल्स के फाइनल में दिफाई चैंपियन अरियाना सवलेंका और एलिना रवकीना का मुकाबला होगा। मर्दों के सिंगल्स के फाइनल में कल अलेक्जेंडर ज़वरेव और बेन शेल्टन आमने सामने होंगे। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। ब्रिक्स मुल्कों ने ज्यादा मजबूत कसीर रुखी निजाम और इश्तराक बढ़ाने के अपने अहद का इरादा करते हुए नई दिल्ली ऐलामिया 2026 मंजूर किया है। इसमें मेंबर मुल्कों के माबेन और ज्यादा इकतसादी और तरक्याती इश्तराक के लिए आ गया है। तनाज़ात खासतौर पर मगरबी एशिया के तनाज़े के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी पर जोर दिया गया है। भारत ने कहा है कि नई दिल्ली ऐलामिया का मंजूर होना भारत की ब्रिक्स सदारत के अहम नतायज में से एक है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि फैसलों और नतीजों के दरमियान फर्क को साझेदारी और इज्तिमाई इकदाम के जरिए

0: दूर किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म ने इस बात को उजागर किया कि ब्रिक्स हरेक को साथ लेकर चलने की हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और चीन के सदर शी जिनपिंग ने अपनी दोतरफा बातचीत में ताल्लुकात के कलीदी और तवील मुद्दती नुक्ते नजर पर जोर दिया। जनाब मोदी ने ब्रिक्स मुल्कों के वज़ीर आज़म के साथ दोतरफा बातचीत की। सीबीआई रेड कॉर्नर नोटिस के तहत मफरूर मुलजिम अमृतपाल सिंह को मोल्डोवा से भारत ले आई है। और यूएस ओपन टेनिस में आज रात खवातीन सिंगल्स के फाइनल में पिछली बार की चैंपियन अरियाना सबलेंका और एलिना रिवेंका आमने सामने होंगी। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: दरिंदेज आकाशवाणी दिल्ली ने हिंदी अंग्रेजी दोनों और तीन खबर लाइन चुतपिन मीडियम वेव का दिवा आकाशवाणी करगिल सदुर्गु नाव फेत सौसुक कसता प्रोग्राम नजर नी फायुल प्रोग्राम प्रोचुक हन पॉइंट मोहम्मद हसन अस्करी।